नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ यूँ हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा, क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाए वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है, इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथने दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मुसोर ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनके घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: एवो केवाय जैवीरे एक बैरू मजबूत बने हैं तैवीरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं पण मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती आवे है अधिकार थकी सुरक्षा थकी अने आपरे अस्तित्व नी पहचान थकी जमीन पैसा माते बैरा नु नाम एने हपना नु पहलू पगतियो है इन्हें मले है आत्मविश्वास रुपया की सुरक्षा अने अपना फैसला खुद लेवानी ताकत तो आओ बोलो आज मली ने आवाज उठावो इतले हंगरी सूर्य हंगरी बुने हंगरी माए अपना हक ने जमी माते गर्व थकी उभी थई शके बोनो ने अधिकार किम की अधिकारस असली ताकत है
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता, दादा दादी, शिक्षक और परिवार के हर सदस्य से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बच्चों की गलती पर प्रतिक्रिया कैसे दें।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को डांट कर नहीं समझाकर बड़ा बनाया जाता है। हर गलती एक नई सीख लेकर आती है, बस उसे सही दिशा देने वाला चाहिए होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की गलती पर हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम जैसा कि जानते हैं कि बचपन जीवन का वह खूबसूरत पड़ाव होता है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, जब बोलना सीखता है साथियों तो शब्द गलत बोलता है, जब वह पढ़ना लिखना शुरू करता है तो गलतियां करता रहता है और यही गलतियां धीरे धीरे उसे समझदार और आत्मविश्वासी बनाती हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि गलती करना बचपन का स्वाभाविक हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है अंजलि जी कि बच्चों की गलती से ज्यादा असर हमारी प्रतिक्रियाओं का बच्चों पर होता है। यदि बच्चा गलती करे तो हम उस पर तुरंत गुस्सा कर देते हैं, उसे डांट देते हैं या उसे अपमानित कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों वह गलती से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर यदि हम धैर्य और समझदारी से उसे समझाएंगे तो वही गलती उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि क्या बच्चों से गलती होना सामान्य बात है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हाँ, बच्चों से गलती होना बिल्कुल सामान्य बात है। कोई भी बच्चा जन्म से समझदार नहीं होता है, वह अपने अनुभवों, परिवार, विद्यालय और समाज से सीखता है। जिस प्रकार कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है उसी प्रकार बच्चे का व्यवहार और व्यक्तित्व भी समय के साथ विकसित होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो कई बार गिरता है। क्या श्रोता साथियों हम उसे गिरने पर डांटते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि गिरकर ही वह संतुलन बनाना सीखेगा। ठीक उसी तरह कशिश जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी वह छोटी छोटी गलतियों से सीखता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार बच्चा जिज्ञासा के कारण गलती करता है, वह जानना चाहता है कि ये चीज कैसे काम करती है। कभी वह किसी की नकल करता है, कभी दोस्तों के कहने पर कुछ कर बैठता है और कभी बिना सोचे कोई निर्णय ले लेता है।
0: जी,
1: इसका मतलब यह नहीं होता है कि बच्चा बुरा है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर गलती पर हम उसे शरारती, नालायक या बेकार कहेंगे तो धीरे धीरे वह खुद को भी अपने बारे में यही सोचने लगेगा। इसलिए गलती को बच्चों की पहचान मत बनाइए। गलती केवल एक घटना है, उसका पूरा व्यक्तित्व नहीं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही बात करते हैं कि जब बच्चे गलती करते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया होनी क्या चाहिए। तो दोस्तों किसी भी गलती के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर होता ये है अंजलि जी कि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो हम बिना कुछ सोचे तेज आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं या डांटने लग जाते हैं।
1: जी,
0: लेकिन गुस्से में श्रोता साथियों लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। सबसे पहले आप स्वयं को शांत कीजिए। यदि श्रोता साथियों जरूरत हो तो 2 मिनट रुक जाइए, जब आपका मन शांत होगा तभी आप बच्चे को सही ढंग से समझा पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए कि बच्चा पहले हमारे चेहरे के भाव पढ़ता है, फिर हमारे शब्दों को सुनता है और फिर हमारे चेहरे पर होने वाले गुस्से को देखता है। तो श्रोता साथियों उसका ध्यान हमारी सीख पर नहीं बल्कि हमारे डर पर रहेगा। इसके बाद आप बच्चे के पास बैठिए और उससे प्यार से पूछिए कि क्या हुआ, तुम मुझे पूरी बात बताओ। इतना सुनते ही अंजलि जी कई बच्चे अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझना चाहता है, केवल डांटना नहीं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यदि बच्चा सच बोलता है तो उसकी ईमानदारी की सराहना करना भी बहुत जरूरी है। आप उसे ये महसूस कराइए कि सच बोलना हमेशा अच्छी बात होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात आती है, क्या बच्चों की पूरी बात सुनना जरूरी है? तो श्रोता साथियों हाँ, बिल्कुल जरूरी है। कई बार हम केवल आधी बात देखकर या किसी दूसरे की बात सुनकर ही बच्चे को दोषी मान लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर वह ऐसा क्यों कर बैठा? मान लीजिए कि बच्चे ने स्कूल में किसी दोस्त को धक्का दे दिया, लेकिन यदि कशिश हम यही सुनकर उसे डांट देंगे तो शायद हम पूरी सच्चाई से अनजान रह जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है कि पहले किसी और ने उसे परेशान किया हो या वह खुद किसी बात से दुखी हो। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गलती सही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सही निर्णय लेने से पहले पूरी बात जानना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: बिना सुने फैसला करना केवल बच्चे के साथ ही नहीं किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं है। एक अच्छी आदत यह हो सकती है कि हर बार बच्चे से पूछे कि तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है इसमें गलती कहाँ हुई। ऐसे सवाल बच्चे को सोचने की आदत भी सिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी बच्चा गलती करे तो पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर उसके बाद उसे समझाइए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
2: चकलो

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना। यही अब बात आती है कि क्या हर गलती पर डांटना या सजा देना सही तरीका है। तो श्रोता साथियों, अनुशासन जरूरी है, लेकिन अनुशासन का मतलब केवल डांटना या सजा देना नहीं होता है। यदि हर छोटी बड़ी गलती पर केवल डांट ही मिलेगी तो बच्चा धीरे

0: धीरे धीरे गलती सुधारने के बजाय उसे छिपाने की कोशिश करने लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चे कशिश डर के कारण झूठ बोलने लगते हैं, कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना बंद कर देते हैं, तो कुछ इतने डर जाते हैं कि कोई नया काम करने की हिम्मत ही नहीं करते। इसलिए समझना जरूरी है कि हर गलती की गंभीरता अलग होती है। यदि बच्चे से अनजाने में दूध गिर गया हो तो क्या उसे उसी तरह डांटना चाहिए जैसे किसी गंभीर गलती पर? तो बिल्कुल नहीं। छोटी गलतियों को सिखाने का अवसर बनाइए, बच्चे को समझाइए कि अगली बार सावधानी कैसे रखनी है। कई बार बच्चों को उसकी जिम्मेदारी समझा देना ही सबसे बड़ी सीख होती है। यदि उसने कमरा गंदा किया है तो उसे स्वयं साफ करने दीजिए। यदि किसी का सामान खराब किया है तो उसे माफी मांगने और उसकी भरपाई करने की सीख दीजिए। तो यही वास्तविक अनुशासन है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इससे क्या आगे अगर बात करें कि बार बार गुस्सा करने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, तो श्रोता साथियों, कई बार हम माता पिता ये सोचते हैं कि यदि बच्चे को बार बार डांटेंगे तो वह जल्दी सुधर जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सच तो ये है अंजलि जी कि लगातार गुस्सा और डांट बच्चे के मन पर गहरा असर छोड़ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि डांट सुनकर बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि वे ये सोचने लगते हैं कि जब बिना वजह डांट पड़ रही है तो सही और गलत में क्या ही फर्क पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: वहीं कुछ बच्चे इतने डर जाते हैं कि इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और वे किसी भी नए काम को करने से घबराते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को अनुशासन आप जरूर सिखाइए, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। गुस्सा क्षण भर के लिए चुप करा सकता है, लेकिन समझदारी जीवन भर के लिए सुधार सकती है।
0: बिल्कुल। यही कशिश अब बात आती है माता पिता और परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो श्रोता साथियों, बच्चे सबसे ज्यादा अपने परिवार से सीखते हैं। वे केवल हमारी बातें ही नहीं सुनते बल्कि कशिश हमारे व्यवहार को भी देखते हैं। यदि घर में बड़े एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं और शांति से समस्याओं का समाधान करते हैं तो बच्चे भी वही आदतें सीखते हैं। यदि माता पिता हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, गुस्सा करेंगे या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करेंगे तो उसका असर बच्चों के व्यवहार पर भी दिखाई देगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए परिवार का वातावरण प्रेम, विश्वास और सहयोग से भरा होना चाहिए।
1: जी जी।
0: बच्चों के साथ रोज कुछ समय जरूर बिताएं, उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या हुआ, उन्हें किस बात की खुशी हुई और किस बात से दुख हुआ। जब परिवार में खुलकर बातचीत होती है श्रोता साथियों, तो बच्चे अपनी गलतियां भी छिपाते नहीं है। माता पिता को ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चे की हर छोटी उपलब्धि की सराहना करें, केवल गलती पर ध्यान देने के बजाय उसकी अच्छी आदतों की भी प्रशंसा करें।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चा अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ जरूर करें, इससे वह अच्छे व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि यदि बच्चा एक ही गलती को बार बार करता है तो केवल डांटना समाधान नहीं है। सबसे पहले माता पिताओं को अंजलि जी ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वह गलती दोबारा हो क्यों रही है।
0: बिल्कुल।
1: क्या बच्चे को बात ठीक से समझ नहीं आ पा रही है? क्या उसके दोस्तों का उस पर कुछ प्रभाव है? क्या वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है या फिर उसे अधिक समय और मार्गदर्शन की जरूरत है?
0: जी जी।
1: क्योंकि कई बार साथियों बच्चे को एक ही बात कई बार समझानी पड़ती है। वैसे तो ये बिल्कुल सामान्य है, ऐसे में धैर्य के साथ समझाने से अच्छी आदतें विकसित होती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर आप शिक्षक से भी बात करें और घर तथा स्कूल मिलकर बच्चे का मार्गदर्शन कर सकते हैं अंजलि जी। बच्चों को यह महसूस कराना होगा कि पूरा परिवार उनके साथ है और उनका उद्देश्य केवल उसे डांटना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाना है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों से कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि बच्चों का बचपन बहुत अनमोल होता है। यह वही समय है जब उनके मन में संस्कार, आदतें और आत्मविश्वास विकसित होता है। यदि इस समय उन्हें प्यार, सम्मान, धीर और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वे भविष्य में एक जिम्मेदार, संवेदनशील और अच्छे इंसान बनेंगे। इसलिए
1: हाँ।
0: अगली बार जब आपका बच्चा कोई गलती करे तो गुस्से के बजाय मुस्कुराकर उसकी बात सुनिए, उसे समझाइए और सही रास्ता दिखाइए। हो सकता है कि आपकी वही एक सकारात्मक प्रतिक्रिया उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए दोस्तों, बच्चों की हर गलती को सजा नहीं, सीख और संस्कार देने का अवसर बनाइए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।
2: अकड़ बक्कड़ बम्बे बम,

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
4: होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
3: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो

0: जीवन की आधी चुनौतियों को जीत लेता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि उत्साह को उदासी में बदलने वाले मन पर हमें काम कैसे करना है और हमारे युवा साथी इसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों को मनोरंजन करवाते हैं प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि उत्साह को उदासी में बदलने वाले मन पर हमें काम करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं। जागृति जी, हमारे मन में बड़े बड़े सपने होते हैं, नई उम्मीदें होती हैं और कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। लेकिन साथियों, कई बार अचानक परिस्थितियां बदल जाती है, कोई असफलता मिल जाती है, किसी का साथ छूट जाता है, या फिर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, या फिर हम देखते हैं कि हमारे युवा साथियों के जीवन में चुनौती आ जाती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: जो हमारे उत्साह को धीरे धीरे उदासी में बदल देती है साथियों। और ये जो परिवर्तन है वो अक्सर बहुत धीरे होता है, लेकिन कई बार हमें ये पता भी नहीं चलता है कि जो मन कल तक उत्साह से भरा हुआ था वही आज निराशा और उदासी से गिर गया है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। शरीर थक सकता है, परिस्थितियाँ कठिन हो सकती है, लेकिन यदि मन मजबूत है तो व्यक्ति हर कठिनाइयों का सामना कर सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए उनके पास कोई जादू शक्ति नहीं थी, उनके पास केवल एक मजबूत और सकारात्मक मन था। मन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नई राह दिखाता है और कठिन समय में हिम्मत देता है। लेकिन जब मन कमजोर होने लगता है तब छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि हम मन की शक्ति के बारे में बात करते यही जानते हैं उत्साह क्यों कम होने लगता है। तो श्रोता साथियों, उत्साह कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक भावना है जिसे लगातार बनाए रखना पड़ता है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: जब हमारी उम्मीदें बहुत गहरी हो जाती है और परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते तब उत्साह कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता देर से मिलती है और यही देरी हमें निराश करने लगती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो ये तो हमने बात की श्रोता साथियों कि उत्साह हमारा कम क्यों होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर तुलना करने की आदत की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि वर्तमान में तुलना करने की आदत हमारे युवा साथियों में काफी हद तक बढ़ चुकी है और जिसके कारण वे उदास भी रहने लगे हैं। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग दूसरों की सफलता देखते हैं लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखते। जागृति जी, दूसरों की उपलब्धियों को देखकर कई युवा साथी जो हैं वो स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन्हें कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। श्रोता साथियों, किसी को सफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वह असफलता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने के बजाय आपको स्वयं के विकास पर ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि तुलना की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर हम अपनी जिंदगी को कमतर समझते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। किसी की नौकरी, किसी का घर, किसी की पढ़ाई, किसी की लोकप्रियता देखकर हम खुद को पीछे मान लेते हैं। लेकिन श्रोताओं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का अध्याय देखकर अपनी पूरी किताब का फैसला मत कीजिए। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तब हम अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी नजर केवल अपनी कमियों पर टिक जाती है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा नहीं है, आपकी पहचान आपकी अपनी है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से चली रही है और हम जान रहे हैं कि मन की शक्ति को पहचानना हमारे युवा साथियों के लिए क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही जैसा कि विषय भी आज के कार्यक्रम का बड़ा रोचक है कि उत्साह को उदासी से बदलने वाले मन पर काम हमें करते रहना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोताओं को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उत्साह को उदासी से बदलने वाले मन पर काम करते रहें। हमने जाना था मन की शक्ति को समझना क्यों जरूरी है, साथ ही उत्साह क्यों कम होने लगता है, तुलना करने की आदत उदासी बढ़ाती है। यही जानते हैं नकारात्मक सोच कैसे उत्साह छीन लेती है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि कशिश, मन में आने वाला विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम हर समय यही सोचते रहे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। दोस्तों,
1: बिल्कुल,
0: नकारात्मक सोच एक ऐसे दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारे उत्साह को खा जाती है। ये हमें अवसरों से दूर करती है और डर के दायरों में कैद करती है।
1: जी हाँ।
0: जबकि सकारात्मक सोच हमें हर समस्या में समाधान खोजने की शक्ति देती है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि समस्याओं के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखा जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को उनके मन पर काम करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही साथियों मन को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित अभ्यास करना जरूरी होता है। जैसे कि यदि हम मन की देखभाल नहीं करेंगे जागृति जी, तो चिंता, तनाव और निराशा हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे।
0: बिल्कुल
1: साथियों, मन पर काम करना एक दिन का कार्य वैसे तो नहीं होता, लेकिन आपको ये कार्य जरूर करना है और ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्योंकि जब हम मन पर काम करते हैं तो हम स्वयं परिवर्तन देखते हैं जागृति जी। देखते हैं कि हम अपने कार्य पर फोकस करने लग जाते हैं, हमारे सारे कार्य जो है वो सफलता पूर्वक होते हैं, साथ ही हमारा मन भी शांत रहता है इससे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि यदि हम अपने मन को मजबूत नहीं बनाएंगे तो जीवन की चुनौतियां हमें बार बार कमजोर करेंगी। इसलिए मन पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर पर काम करना। जानते हैं श्रोता साथियों कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो मन को मजबूत और उत्साही बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य में बांटना भी जरूरी है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में उत्साह बनता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो प्रेरित करते हो, आगे बढ़ने की बात करते हो और मुश्किल समय में हिम्मत देते हो।
1: जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों असफलता को हमें शिक्षक बनाना है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जागृति जी जिसने असफलता का सामना न किया हो। दोस्तों असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
0: जी हाँ,
1: जो लोग असफलता से सीखते हैं वे आगे चलकर बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं, लेकिन वही जागृति जी जो लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं वे आगे बढ़ने से भी रुक जाते हैं।
0: और यही हम बात करेंगे कि हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। श्रोताओं, कृतज्ञता हमें कमी नहीं बल्कि उपलब्धियों पर ध्यान देना सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे मन में संतोष और खुशी बढ़ती है कशिश। कहा गया है कि जो है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो।
1: जी जी।
0: साथ ही प्रकृति से जुड़िए क्योंकि प्रकृति मन को शांति देती है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, खुली हवा और सूरज की रोशनी मन को नई ऊर्जा देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें अपनी रुचियों को समय देने की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई रुचि जरूर होती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन वर्तमान में श्रोता साथियों हमारी जो जीवन शैली है श्रोता साथियों वो काफी व्यस्त हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे जो युवा साथी हैं वो अपनी रुचियों पर समय ही नहीं दे पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आपकी भी किसी क्षेत्र में रुचि है, जैसे कि गाना गाना आपको पसंद है, चित्रकला आपको पसंद है, या फिर कोई रचनात्मक गतिविधि में आप कह सकते हैं कि अपना मन लगाना चाहते हैं, तो ऐसा आप जरूर करें क्योंकि ये आपके मन को प्रसन्न रखेगा। जागृति जी, जब हम अपनी पसंद के कार्य करते हैं तो इससे हमारा तनाव भी कम होता है।
0: बिल्कुल,
1: और उस कार्य के प्रति हमारा जो उत्साह है वो भी बढ़ता है। देखते हैं कि कई बार अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सहायता करना होता है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें ये एहसास हो जाता है कि हम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और यही भावना जागृति जी आत्मविश्वास और खुशी दोनों को बढ़ाती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियां समय और धैर्य मांगती है।
1: बिल्कुल,
0: बीज बोते ही फल नहीं मिलता श्रोता साथियों, पहले पौधा बनता है फिर वृक्ष और उसके बाद फल आते हैं। इसी तरह सफलता भी धीरे धीरे मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे कि धीरे रखिए, समय हर मेहनत का फल देता है। यदि आज आपके मन में उदासी है तो घबराइए मत, उदासी कोई स्थायी मेहमान नहीं है कशिश, वो आती है और चली जाती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन यदि हम अपने मन पर लगातार काम करते रहेंगे तो उत्साह फिर लौट आएगा। याद रखिए श्रोताओं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अपने मन को हारने न देने की है। जब मन मजबूत होगा तब परिस्थितियां चाहे जैसी हो आप आगे बढ़ते रहेंगे। उत्साह कोई चमत्कार नहीं बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है। इसलिए अपने मन की देखभाल कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए।
1: जी हाँ, क्योंकि युवा साथियों, जीवन में कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि सब आपके विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसे में आपको याद रखना है कि आपका मन आपका ही सबसे बड़ा साथी है।
0: जी हाँ,
1: अपने मन को हार मानने की आदत मत दीजिए, उसे संघर्ष करने, सीखने और आगे बढ़ने की आदत डलवाइए।
0: बिल्कुल,
1: जब उत्साह कम हो जाए तब रुकिए मत साथियों, जब निराशा पास आए तो स्वयं को संभालिए और जब असफलता मिले तब फिर से शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों याद रखिए कि उत्साह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा अपने आप बनी रहे।
0: बिल्कुल,
1: इसे हर दिन अपने विचारों, कर्मों और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जीवित रखना पड़ता है।
0: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि उत्साह की लो को कभी बुझने मत दो, हर दिन खुद पर काम करते रहो, क्योंकि मजबूत मन ही सफल जीवन की पहचान है। इसी संदेश और इसी उम्मीद के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उन विषयों की जो हमारे समाज, हमारे विकास और हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं या किसी होटल में खाना खाते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, कपड़े खरीदते हैं या किसी सेवा का लाभ लेते हैं, तो हमें बिल में एक शब्द दिखाई देता है, GST।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर लोग इसे केवल एक टैक्स समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि ये GST आखिर क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है और ये देश के विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं GST के महत्व के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है GST के महत्व को लेकर। अंजलि, दरअसल किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल बड़े उद्योगों, ऊंची इमारतों या आधुनिक तकनीक से नहीं होती। विकास तब होता है जब शासन व्यवस्था सरल हो, आर्थिक गतिविधियां सुचारू हो और नागरिक तथा सरकार दोनों अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समझते हैं कि GST केवल एक कर व्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता और सच्चे स्वराज की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। GST का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री पर लगाया जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, GST लागू होने से पहले देश में कई प्रकार के कर लागू थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे जागृति जी। व्यापारियों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कहीं वेट था, कहीं सेवा कर, कहीं उत्पादक शुल्क तो कहीं अन्य कर।
0: बिल्कुल,
1: इन अनेक करों की जटिल व्यवस्था से व्यापार करना आसान नहीं था। इसी समस्या का समाधान लेकर आई GST व्यवस्था, जिसने एक देश एक कर की अवधारणा को मजबूत किया।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि एक ही देश में हर राज्य की अलग अलग कर व्यवस्था हो। एक व्यापारी को एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजने के लिए अलग नियमों का पालन करना पड़े। इससे समय भी ज्यादा लगता है और लागत भी बढ़ती है। GST ने इन जटिलताओं को काफी हद तक कम किया है। इस व्यवस्था ने पूरे देश को एक साझा आर्थिक बाजार के रूप में जोड़ने का प्रयास किया है।
1: बिल्कुल,
0: जब भारत के अधिकांश हिस्सों में व्यापारिक गतिविधियां एक समान कर प्रणाली के अंतर्गत संचालित होती है अंजलि, इससे व्यापारी को सुविधा मिलती है और आर्थिक गतिविधियों में भी गति आई है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब व्यापार सरल होता है तब रोजगार बढ़ते हैं, जब रोजगार बढ़ते हैं तब लोगों की आय भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: और जब लोगों की आय बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। GST ने व्यापार करने की प्रक्रिया को बहुत अधिक व्यवस्थित और सरल बनाया है। श्रोता साथियों, पहले अलग अलग प्रकार के करों के कारण व्यापारियों को कई रिकॉर्ड रखने पड़ते थे। अब अधिकांश प्रक्रिया जागृति जी एकीकृत प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। इससे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योग तक को सुविधा मिली है और यह व्यवस्था व्यापार में पारदर्शिता और अनुशासन को भी बढ़ावा देती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि सच्चे स्वराज का आधार केवल अधिकार नहीं है बल्कि जवाबदेही भी है।
1: बिल्कुल,
0: जब आर्थिक व्यवस्था पारदर्शी होती है तब भ्रष्टाचार और कर चोरी की संभावनाएं कम होती है। GST की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित व्यवस्था है।
1: जी हाँ,
0: हर लेन देन का विवरण दर्ज होता है। इससे कर संग्रह अधिक व्यवस्थित बनता है और आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखना आसान हो जाता है। पारदर्शिता केवल सरकार के लिए लाभदायक नहीं होती बल्कि ये ईमानदार व्यापारियों और नागरिकों के हितों की भी रक्षा करती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: GST भी डिजिटल व्यवस्था को अपनाकर कर प्रणाली को आधुनिक स्वरूप दिया है। ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन रिटर्न, डिजिटल रिकॉर्ड जैसे व्यवस्थाओं ने कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया है। इससे समय की बचत भी होती है और प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें तेजी आती है। श्रोता साथियों, डिजिटल व्यवस्था नागरिकों और व्यापारियों दोनों को तकनीक के उपयोग के लिए प्रेरित करती है। यह डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं GST के बारे में, तो बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

0: सबसे पहले हमने जाना कि किस तरीके से हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और उसमें जीएसटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा के रूप में सामने आई है। श्रोता साथियों, हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, हम अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते हैं।
1: जी हाँ,
0: जीएसटी व्यवस्था ने उपभोक्ताओं के लिए भी कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। बिल लेने की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। लोग अब अधिक जागरूक हो रहे हैं कि खरीदारी के समय बिल लेना क्यों आवश्यक है। बिल केवल श्रोता साथियों भुगतान का प्रमाण नहीं होता है, बल्कि यह पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था की पहचान भी है।
1: बिल्कुल,
0: जब उपभोक्ता बिल लेते हैं तब आर्थिक गतिविधियां अधिक व्यवस्थित होती हैं और कर प्रणाली मजबूत बनती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि कर आखिर ज्यादा का है। श्रोताओं, कर से प्राप्त राजस्व किसी भी सरकार के लिए विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है।
0: जी हाँ।
1: इन्हीं संसाधनों से सड़कें बनती है, अस्पताल विकसित होते हैं, विद्यालयों की व्यवस्था मजबूत होती है, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होता है, जल बिजली परिवहन और अन्य आधारभूत सेवाओं के विकास में भी कर राजस्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंजलि, जब कर संग्रह व्यवस्थित और पारदर्शी होते हैं तब विकास कार्यों को गति मिलती है।
0: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आर्थिक एकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है जीएसटी। जीएसटी ने भारत को आर्थिक दृष्टि से अधिक एकजुट बनाने में योगदान दिया है। जागृति जी, देश के अलग अलग राज्यों के बीच व्यापारिक प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल हुई है। इससे वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह सुगम हुआ है। एक मजबूत राष्ट्रीय बाजार बनने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को बढ़ाती है और गुणवत्ता श्रोता साथियों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जीएसटी केवल कर व्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि केवल बड़े उद्योगी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि छोटे व्यापारी, कुटीर उद्योग, स्थानीय उद्यमी और स्वरोजगार करने वाले भी देश के आर्थिक रीढ़ होते हैं। श्रोताओं, जीएसटी ने व्यवसाय को और अधिक संगठित स्वरूप देने का प्रयास किया है।
0: बिल्कुल,
1: इससे छोटे व्यापारियों को भी व्यापक बाजार तक पहुंचने के अवसर मिले हैं। जब स्थानीय उद्यम मजबूत होते हैं अंजलि, तब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलती है।
0: जी हाँ।
1: सच्चा स्वराज केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं श्रोताओं, ये प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से मजबूत होता है। यदि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो व्यवस्था और अधिक मजबूत बन सकती है। खरीदारी करते समय बिल लेना, आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता रखना, नियमों का सम्मान करना, जागरूक नागरिक बनना, ये छोटे छोटे कदम देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत का एक अलग ही महत्व है। आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं आती है। आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत आर्थिक व्यवस्था, पारदर्शी शासन और जिम्मेदार नागरिक भी आवश्यक है। जीएसटी ने देश में आर्थिक अनुशासन और एकरूपता को बढ़ावा दिया है। जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है तब निवेश बढ़ता है, जब निवेश बढ़ता है तब रोजगार बढ़ते हैं, और जब रोजगार बढ़ते हैं तब आत्मनिर्भर भारत का सपना भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि स्वराज का अर्थ केवल शासन परिवर्तन नहीं है। स्वराज का वास्तविक अर्थ है जागरूक नागरिक, जिम्मेदार समाज और पारदर्शी व्यवस्था।
1: बिल्कुल,
0: जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं तब स्वराज की भावना मजबूत होती है। जीएसटी इसी सोच को आगे बढ़ाता है।
1: जी हाँ।
0: यह व्यवस्था हमें याद दिलाती है कि विकास केवल सरकार का कार्य नहीं है, विकास एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जब व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते हैं, जब नागरिक जागरूक होकर बिल लेते हैं और जब एक संग्रह पारदर्शी होता है तब देश मजबूत बनता है और यही सच्चे स्वराज की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे श्रोताओं कि जीएसटी केवल एक कर नहीं है, ये व्यवस्था, पारदर्शिता, विश्वास और विकास का प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें बताता है कि मजबूत राष्ट्र केवल बड़े सपनों से नहीं बनते बल्कि व्यवस्थित प्रयासों, ईमानदार भागीदारी और जिम्मेदार नागरिकता से बनते हैं।
0: जी जी।
1: तो श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि हम जागरूक नागरिक बने, आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा दें, नियमों का सम्मान करें और राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाएं। क्योंकि जब नागरिक जिम्मेदार बनते हैं अंजलि, तब विकास की गति बढ़ती है। जब व्यवस्था पारदर्शी बनती है तब विश्वास मजबूत होता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तब सच्चे अर्थों में स्वराज स्थापित होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि कर व्यवस्था हो पारदर्शी, विकास बने सबका अधिकार, जीएसटी के साथ आगे बढ़े भारत, स्वराज बने सशक्त और शानदार।
1: जी हाँ। तो श्रोताओं, जीएसटी केवल एक कर व्यवस्था में बदलाव नहीं बल्कि यह एक ऐसे भारत की कल्पना है जहाँ व्यवस्था सरल हो, व्यापार आसान हो कर संग्रह पारदर्शी हो और विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था। जब नागरिक ईमानदारी से कर देते हैं अंजलि, सरकार उन संसाधनों का उपयोग जन कल्याण में करती है, तब सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना मजबूत होती है। तो हम सभी को जागरूक नागरिक बनना है, हर खरीदारी पर बिल लेना है, कर नियमों का सम्मान करना है और एक मजबूत पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है। क्योंकि कहा गया है कि कर का सही भुगतान करेंगे, विकास का नया अभियान चलाएंगे, जीएसटी को समझेंगे और अपनाएंगे, तभी सच्चे स्वराज की राह बना पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हो गई हैं श्रोता साथियों से कि जीएसटी क्या है और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है प्रकृति के साथ जुड़ाव और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर। हम देखते हैं कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध उतना ही पुराना है मनीषा और कशिश, जितना स्वयं मानव सभ्यता का इतिहास है।
1: बिल्कुल जी हाँ।
2: प्रकृति ने मनुष्य को जन्म से लेकर जीवन के प्रत्येक चरण तक हर वह चीज प्रदान की है जो उसके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। शुद्ध वायु, निर्मल जल, पौष्टिक भोजन, औषधियाँ, ऊर्जा, मानसिक शांति, आधुनिक जीवन शैली में तकनीक, व्यस्त दिनचर्या और शहरीकरण के कारण मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
2: इसका प्रभाव श्रोता साथियों केवल पर्यावरण पर ही नहीं पड़ता बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
1: जी हाँ।
2: तनाव, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं आज तेजी से बढ़ रही है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हमारा किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें ढेर सारी होंगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले कार्यक्रम का गीत हम सुनवा दें।
2: जी हाँ
1: जी,
2: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ाव और बेहतर स्वास्थ्य का क्या संबंध है।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, अगर इसी में बात करें तो हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ाव केवल एक शौक नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन की आवश्यकता बन चुकी है। प्रकृति हमें केवल सुंदर दृश्य ही नहीं देती साथियों, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी सिखाती है। हम देखते हैं मनीषा और अंजलि जी की हरे भरे पेड़, खुला आकाश, चहचहाते पक्षी, बहती नदियाँ, बगीचे मन को सुकून देते हैं और हमारे शरीर को नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही वैज्ञानिक शोधों से भी ये सिद्ध हो चुका है कि नियमित रूप से प्रकृति के संपर्क में रहने वाले लोग अधिक स्वस्थ, प्रसन्न और संतुलित जीवन जीते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ाव को अपनाना श्रोता साथियों केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रकृति केवल जंगल, पहाड़, नदियों का नाम नहीं है। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, ऋतुएं और हवाएं संपूर्ण पर्यावरण में शामिल होते हैं।
2: बिल्कुल,
1: प्रकृति जीवन का आधार है श्रोता साथियों। यदि प्रकृति स्वस्थ होगी तो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा।
2: जी हाँ।
1: साथ ही हम देखते हैं कि प्रकृति और मानव का भी अंजलि जी गहरा संबंध है। मनुष्य का शरीर प्रकृति के पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश से बनाया जाता है।
2: जी हाँ।
1: यही कारण है साथियों कि हमारा स्वास्थ्य भी इन्हीं तत्वों के संतुलन पर निर्भर करता है। जब हम प्रकृति से दूर होते हैं साथियों, तो हमारा शरीर और मन दोनों असंतुलित होने लगते हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि प्रकृति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
2: यानी कि मनीषा और कशिश, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से शरीर को अनेक लाभ मिलते हैं। शुद्ध हवा फेफड़ों को स्वस्थ रखती है, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, हरियाली के बीच टहलने से हृदय मजबूत होता है और रोजाना पैदल चलने से मोटापा नियंत्रित रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर अधिक सक्रिय और ऊर्जावान भी बना रहता है।
1: बिल्कुल,
2: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मजबूत बन पाता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही बात आती है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकृति का क्या प्रभाव है। तो जैसा कि श्रोता साथियों हम सभी जानते हैं कि आज मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक औषधि का कार्य करती है। ऐसे में जैसे कि प्रकृति में रहने से तनाव और चिंता कम होती है।
1: जी हाँ।
0: मन शांत और प्रसन्न रहता है साथियों, सकारात्मक सोच विकसित होती है, क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होता है, साथ ही ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अंजलि जी, दोस्तों कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति कुछ समय पेड़ों की छाया में बैठता है या किसी पार्क में घूमता है तो उसका मन स्वतः ही हल्का महसूस होने लगता है।
2: जी हाँ।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे प्रकृति के साथ जुड़ाव और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम के माध्यम से जाना था श्रोता साथियों कि प्रकृति का वास्तविक अर्थ क्या है, प्रकृति और मानव का गहरा संबंध किस प्रकार है। साथ ही अंजलि जी, हमने जाना था कि प्रकृति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों उपयोगी है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर बात करें श्रोता साथियों कि सूर्य का स्वास्थ्य में क्या योगदान है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सूर्य है वो जीवन का एक स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: सूर्य की हल्की सुबह की किरणें श्रोता साथियों विटामिन डी का निर्माण करती है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है।
1: बिल्कुल,
0: मनोदशा को बेहतर बनाती है और हमारी गुणवत्ता में भी सुधार करती है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं।
1: बिल्कुल, यही अब बात आती है मनीषा कशिर पेड़ पौधों का स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। हम देखते हैं कि पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: पेड़ों से हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण कम होता है, तापमान नियंत्रित रहता है, धूल और धुएं में कमी आती है, मानसिक शांति मिलती है और जीव विविधता सुरक्षित रहती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि प्रकृति हमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, औषधीय पौधे प्रदान करती है। प्रकृति का जो भोजन है वो हमें कई लाभ देता है, जैसे कि पाचन अच्छा रहता है, पोषण अच्छा रहता है, मोटापा कम होता है, मधुमेह और हृदय रोग का खतरा घटता है, इसी के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ पाती है।
2: जी बिल्कुल, बिल्कुल अंजलि जी आपने सही कहा। अब यही अगर औषधीय पौधों के महत्व को हम जाने तो श्रोता साथियों आयुर्वेद में अनेक पौधों का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि तुलसी, नीम, गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा, सहजन और आंवला। साथियों, इन पौधों का उचित उपयोग अनेक रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक होता है।
1: बिल्कुल,
2: वहीं बच्चों के विकास में भी प्रकृति की भूमिका देखी जाती है।
0: जी हाँ
2: अंजलि जी, ऐसा बताया जाता है कि यदि बच्चे जो हैं वो प्रकृति के बीच खेलते हैं तो उनका विकास अधिक संतुलित होता है।
0: जी हाँ,
2: शारीरिक गतिविधि बढ़ती है, रचनात्मकता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है साथ ही, और स्क्रीन टाइम भी बच्चों का कम होता है।
0: जी हाँ,
2: जिससे बच्चों के सामाजिक व्यवहार में बदलाव आता है या फिर कह सकते हैं कि बेहतर बनते हैं वे।
0: जी बिल्कुल कशिश, यही अगर बात करें कि बुजुर्गों के लिए प्रकृति का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बुजुर्गों के लिए प्रकृति मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से लाभकारी होती है। उनके रक्तचाप को नियंत्रित करती है, अकेलेपन की भावना होती है उसको कम करती है साथियों, साथ ही तनाव को कम करती है, हल्का व्यायाम संभव होता है और साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच है वो भी बनी रहती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, यदि योग और ध्यान प्रकृति के बीच किया जाए तो हम देखते हैं कि उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है।
0: जी हाँ,
1: मन अधिक शांत रहता है श्रोता साथियों, स्वास्थ्य बेहतर रहती है, ध्यान में एकाग्रता आती है और मानसिक संतुलन मजबूत होता है।
0: बिल्कुल,
1: शरीर अधिक लचीला बन जाता है। कहना चाहेंगे कशिश और मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वस्थ पर्यावरण में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य से बेहतर रहती है। प्राकृतिक जीवन शैली जैसे कि पर्याप्त धूप लेना, शुद्ध हवा, पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, इन सब के कारण शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है।
0: जी हाँ,
1: आज अधिकांश लोग हम देखते हैं कि मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं, घर और कार्यालय में बंद रहते हैं, शारीरिक श्रम कम हो गया है और कृत्रिम वातावरण में वो रहते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि तनाव बढ़ गया है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है, मोटापा बढ़ता है और मानसिक समस्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली समाप्त हो रही है।
2: जी हाँ अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें दोस्तों कि आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि प्रकृति से जुड़ने के कुछ सरल उपाय भी है जो हम अपना सकते हैं, जैसे कि हमें प्रतिदिन सुबह सैर के लिए जाना चाहिए।
0: जी हाँ,
2: हम घर में श्रोता साथियों अलग अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं। सप्ताह में एक दिन प्राकृतिक स्थान पर श्रोता साथियों आप जा सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी खुले मैदान में खेलने की अनुमति आप दें।
0: जी जी
1: बिल्कुल,
2: वर्षा जल संरक्षण को अपनी जीवन शैली में अपनाएं, पौष्टिक प्राकृतिक भोजन करें साथियों, अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग कम ही करें, पक्षियों के लिए पानी रखें, अधिक समय खुले वातावरण में बिताएं और डिजिटल उपकरणों से कुछ समय के लिए दूरी बनाएं।
0: बिल्कुल,
2: अगर अंजलि जी हमारे श्रोता साथी ये सारे उपाय अपनाते हैं तो हम खुद ही देखेंगे कि इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि प्रकृति धैर्य, संतुलन और सहयोग और निरंतरता का संदेश देती है।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है साथियों, नदियाँ बिना रुके बहती रहती हैं, ऋतुएं समय पर बदलती रहती हैं।
2: बिल्कुल,
0: और सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। श्रोता साथियों, यदि मनुष्य भी प्रकृति से ये गुण ले तो उसका जीवन अधिक संतुलित, स्वस्थ और सुखी बन सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी
1: विदा
0: हाँ।
1: जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: बिल्कुल अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है।
1: जी हाँ।
0: हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट गुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
3: नमस्कार।

भाई ने बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत होती है एक नए विषय को लेकर। आज भी साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही एक प्रेरणादायक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सफलता की तैयारी को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो सफलता शब्द है वो हमें अंदर से आत्मविश्वास से भर देता है। जब भी हम सफलता या सफल व्यक्ति की कहानी के बारे में जानते हैं या सुनते हैं साथियों, तो हमारे अंदर एक अलग ही साहस पैदा हो जाता है और हम भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए या फिर कहें कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी कि हमें सफलता की तैयारी कैसे करनी है और सफल लोगों की पहचान क्या होती है। तो बातें करेंगे दोस्तों ढेर सारी आपसे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम गीत संगीत के साथ पहले आपको मनोरंजन करवाते हैं। तो शुरुआत में सुनते हैं दोस्तों पहले कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसे कि दोस्तों, प्रेरणादायक विषय कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ चुका है, आज हम बात कर रहे हैं सफलता की तैयारी को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि हम जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर उसकी उपलब्धियां हमें दिखाई देती हैं, हमें उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी सफलता सब कुछ नजर आता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज है वो हमें दिखाई नहीं देती, वो है उसकी तैयारी। सफलता श्रोता साथियों मंच पर दिखाई देती है, लेकिन उसकी तैयारी पर्दे के पीछे ही रह जाती है। कई बार हम युवा साथी ये सोचते हैं साथियों कि सफलता किस्मत से मिलती है, किसी खास अवसर से मिलती है, या फिर कुछ लोगों के लिए बनी होती है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि सफलता अचानक नहीं आती, वह तैयारियों का परिणाम होती है, लंबे संघर्ष का परिणाम होती है और धैर्य का परिणाम होती है। हम देखते हैं कि सफलता का बीज तैयारी में छिपा होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक किसान जो है वो खेत में बीज बोता है, वह हर रोज उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है, कई दिनों तक उसे परिणाम नहीं दिखाई देते, लेकिन वह मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। फिर एक दिन दोस्तों वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है साथियों।

जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, नई स्किल सीख रहे होते हैं, समय का सही उपयोग कर रहे होते हैं या अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे होते हैं, तब हम अपनी सफलता का बीज बो रहे होते हैं साथियों। और एक दिन श्रोता साथियों, हमारा धैर्य और हमारा संघर्ष रूपी जो बीज हमने बोया है वो अंकुर बनकर सामने आता है और सफलता के परिणाम लेकर आता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि सफलता का बीज तैयारी में छिपा होता है। साथ ही आज के समय की अगर बात करें तो बहुत से युवा साथियों को ऐसा लगता है कि सफलता के लिए तैयारी करना जरूरी नहीं होता। एक विद्यार्थी अच्छे अंक चाहता है लेकिन नियमित साथियों अध्ययन नहीं करता। कोई नौकरी चाहता है लेकिन अपने कौशल पर काम करना नहीं चाहता। कोई अच्छा वक्ता बनना चाहता है लेकिन लोगों के सामने बोलने का अभ्यास नहीं करना चाहता। सवाल ये नहीं है श्रोता साथियों कि हम बनना क्या चाहते हैं, सवाल तो ये है कि क्या हम उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्या हम सफलता के लिए तैयार हैं साथियों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सफलता की तैयारी हमें शुरू कैसे करनी है। तो आगे कार्यक्रम में हम जरूर जानेंगे साथियों कि सफलता की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना है और उसके बाद दूसरा कदम हमारा क्या हो सकता है। ऐसे ही ढेर सारी बातें करेंगे और भी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाऊं। तो आइए साथियों पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से सफलता कैसे पानी है और सफलता की तैयारी हम कैसे करेंगे, इस विषय को लेकर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। गीत से पहले मैंने आपको सफलता के महत्व के बारे में तो बता दिया था साथियों कि सफलता कैसी होती है। अब यही हम जानते हैं कि सफलता की तैयारी करने के लिए हमें पहला कदम क्या उठाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला कदम तो हमारा यही होना चाहिए कि हमें समय का सम्मान करना है। श्रोता साथियों, सफल लोगों और सामान्य लोगों के पास एक जैसे ही 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग समय को खर्च नहीं करते बल्कि निवेश करते हैं, और आज के जो हमारे युवा साथी हैं वो कई घंटों मोबाइल पर ही रील और कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर चीजें देखते रहते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे तो इस कार्य का समय ही नहीं मिला। साथियों, सही बात तो ये है कि यदि हम केवल एक सप्ताह तक अपनी दिनचर्या लिख लें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। जैसे कि आप एक छोटी सी डायरी तैयार करें, उसमें आप रोज लिखिए कि आपने पढ़ाई कितनी की, मोबाइल कितना चलाया, कुछ नया क्या सीखा, समय आपका व्यर्थ कहाँ गया। साथियों, यही आदत आपको स्वयं का मूल्यांकन करना सिखाएगी और फिर आप देखेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि समय जाता कहाँ है, ताकि आप आगे जाकर ये ना कहें कि मुझे तो इस काम का समय ही नहीं मिला। तो ऐसे में श्रोता साथियों, याद रखें कि सफलता केवल किताबों से नहीं मिलती, सफलता सीखने की आदत है। हर दिन हमें खुद से ये पूछना है कि आज मैंने नया क्या सीखा। अगर आपके पास श्रोता साथियों महंगे संसाधन नहीं है, तब भी आप सीख सकते हैं। आज हमारे पास पुस्तकालय है, ऑनलाइन सामग्रियां हैं, अनुभवी लोग हैं साथियों। बस हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम किसी कार्य को एकाग्रता के साथ सीख पाएंगे और कर पाएंगे। साथ ही एक और बात यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, कि असफलता से आपको डरना नहीं है बल्कि उसका उपयोग करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई युवा ऐसे हैं दोस्तों जो असफल होने पर अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन ये करना तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सपने श्रोता साथियों वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और हमें सोने ही ना दे। श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि असफलता सफलता की तैयारी का ही हिस्सा होती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर श्रोता साथियों वह गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसी तरह जीवन में भी गिरना सामान्य है श्रोता साथियों। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गिरावट के बाद हम क्या सीख रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग मेहनत करते हैं, हमने देखा भी है, लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। जैसे कि आलोचना सुनते ही टूट जाते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं, छोटी समस्या पर हार मान लेते हैं और नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं साथियों। ऐसे में सफलता के लिए मजबूत मानसिकता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप खुद से ये कहिए, मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, और मैं अपनी कोशिश जारी जरूर रखूंगा या रखूंगी। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं वो आपको अंदर से आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। इससे आप आगे भी बढ़ पाएंगे और कुछ नया सीख भी पाएंगे साथियों। साथ ही जीवन में सही लोगों का चुनाव होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपका जो वातावरण है वो आपकी तैयारी को प्रभावित करता है। यदि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी शिकायत करते रहते हैं या किसी और की शिकायत करते रहते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा उनसे प्रभावित होंगी। ऐसे लोगों का साथ चुनिए श्रोता साथियों, जो आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करे, जो आपके सपनों पर विश्वास करे और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। हम जैसा कि सुनते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे सफल बनना है, लेकिन सफलता किस क्षेत्र में, कब बनना है, किस तरीके से बनना है, इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। इसलिए आप अपना लक्ष्य तय रखें। आप ऐसा ना सोचें कि मुझे सफल बनना है, बल्कि आप ये सोचिए कि मुझे अगले 6 महीनों में अपनी संचार क्षमता बेहतर करनी है, या फिर मुझे इस परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। दोस्तों, इस तरीके से जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं साथियों कि सफलता का रहस्य कोई जादुई सूत्र नहीं है, यह तो श्रोता साथियों 5 शक्तिशाली आदतों का सूत्र है।
जैसे कि समय का सम्मान, निरंतर सीखने की आदत, अनुशासन, सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास करना। साथियों, जो व्यक्ति इन पांचों बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसकी सफलता केवल समय की बात नहीं रह जाती, वह सफलता जरूर प्राप्त करता है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी साथियों कि सफलता पाना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन मुमकिन काम जरूर है। हाँ श्रोता साथियों, हो सकता है कि आपको उसमें असफलता मिले, लेकिन असफलता कभी सफलता को रोकती नहीं है। असफलता तो सफलता तक बढ़ने का एक रास्ता होती है साथियों, इसलिए हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता को जरूर प्राप्त कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि सपने देखना बहुत सुंदर बात होती है साथियों, लेकिन सपनों को सच करने के लिए तैयारी करनी जरूर पड़ती है। याद रखिए आप कि सफलता मंजिल नहीं, तैयारी की यात्रा का परिणाम है। आज से अपने सपनों की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, एक नई आदत को अपनाइए, एक नया कौशल सीखिए साथियों, और एक घंटा बेहतर उपयोग कीजिए। और खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपने सपनों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए तैयारी करेंगे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाइयों बहनों, जरूर ग्राम सभा में बोलने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर बोलने में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ये उन्होंने रक्षा करे हैं, तो आओ बोलने भागीदारी बढ़ावे, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोलनी आवाज विकास में असली पहचान है।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि काम को बोझ न समझें और जीवन में काम के महत्व को लेकर।
0: जी,
1: हम देखते हैं कि हम सभी जीवन में कोई न कोई काम करते हैं। कोई खेत में मेहनत करता है, कोई घर संभालता है तो कोई दुकान चलाता है, कोई पढ़ाई करता है तो कोई नौकरी करता है। लेकिन एक सवाल सबके सामने कभी ना कभी आता है कि क्या काम केवल मजबूरी है, क्या काम सिर्फ पैसा कमाने का साधन है, या फिर काम हमारे व्यक्तित्व आत्मविश्वास और जीवन की पहचान भी बनता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि काम का असली अर्थ क्या है, काम को बोझ क्यों नहीं समझना चाहिए और कैसे काम के प्रति सकारात्मक सोच जीवन को नई दिशा दे सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इन सभी बातों को लेकर आज हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों से करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम पहले गीत सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों आज हम कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में बात करने वाले हैं कि काम को हमें बोझ नहीं समझना है बल्कि जीवन में काम के महत्व को हमें समझना है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक मनुष्य किसी न किसी कार्य में लगा ही रहता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि प्रकृति का प्रत्येक जो तत्व है वो निरंतर कार्य कर रहा है। सूर्य प्रतिदिन समय पर उदय होकर हमें प्रकाश देता है। नदियां निरंतर बहती रहती हैं। वृक्ष बिना किसी उपेक्षा के, श्रोता साथियों, फल फूल छाया और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि प्रकृति स्वयं कार्य करना बंद कर दे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा।
1: जी हाँ,
0: इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी कार्य के बिना अधूरा है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, काम केवल शारीरिक मेहनत का नाम नहीं है। जो भी कार्य हम किसी उद्देश्य के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं वही काम है।
0: बिल्कुल,
1: एक किसान खेत में बीज बोता है, एक माँ अपने परिवार की देखभाल करती है, एक छात्र पढ़ाई करता है, एक शिक्षक ज्ञान देता है, एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, एक सफाई कर्मचारी पूरे समाज को स्वच्छ रखने का काम करता है।
0: बिल्कुल,
1: हर काम महत्वपूर्ण है। काम हमें केवल जीविका नहीं देता बल्कि हम देखते हैं कि यह हमारे समाज में हमारी पहचान भी बनाता है। कई बार लोग काम से नहीं बल्कि अपनी सोच से थक जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि कुछ कारण है कि काम में रुचि का अभाव होना, बार बार असफलता मिलना, दूसरों से तुलना करना, अधिक अपेक्षाएं रखना, बिना आराम के लगातार काम करते रहना, काम की सराहना न मिलना और केवल मजबूरी समझकर काम करना। श्रोता साथियों, जब मन में उत्साह कम हो जाता है तब छोटा सा काम भी बड़ा पहाड़ जैसा लगने लगता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज अनेक लोग काम को बोझ समझने लगे हैं। वे कार्य को केवल जिम्मेदारी या मजबूरी मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है साथियों कि काम बोझ नहीं बल्कि अवसर है।
1: बिल्कुल,
0: सीखने का, आगे बढ़ने का, आत्मनिर्भर बनने का और समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का।
1: जी जी
0: अंजलि जी, जो व्यक्ति काम का सम्मान करता है सफलता भी उसी को ही सम्मान देती है। श्रोता साथियों, देखते हैं कि काम जीवन का स्वाभाविक नियम है। प्रकृति ने हमें शिक्षा दी है कि निरंतर कर्म ही जीवन है। जहाँ कर्म रुकता है वहाँ विकास भी रुक जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि श्रोता साथियों बिना उद्देश्य और बिना कार्य के जीवन बिताएं हम, तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा।
1: बिल्कुल कशिश, यदि हम ध्यान से देखें तो हर काम में कुछ न कुछ हमें चीजें सीखने को मिलती है। काम हमें अनुशासन सिखाता है, काम हमें धीरे सिखाता है, काम हमें समय का महत्व समझाता है, काम हमें लोगों से जोड़ता है, काम हमें आत्मनिर्भर बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस व्यक्ति ने काम करना सीख लिया उसने जीवन को जीना भी सीख लिया। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके भीतर आत्मविश्वास अपने आप पैदा होता है।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति हमेशा कशिश असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि अपने काम से जीवन चलाने वाला व्यक्ति सिर ऊंचा करके चलता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मेहनत से कमाई हुई एक छोटी सी आय भी हमें सम्मान देती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि काम केवल रोजगार कमाने का साधन नहीं है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने का भी माध्यम है। साथियों, कार्य हमें अनुशासन, धैर्य, समय का महत्व और जिम्मेदारी का बोध भी कराता है। इसलिए कार्य करना जीवन का स्वाभाविक और आवश्यक नियम है।
1: बिल्कुल,
0: अब यही बात करें कि काम को बोझ क्यों समझा जाता है। तो आज के समय में कई लोग कार्य से बचना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके पीछे कई कारण हैं साथियों, जैसे कि कुछ लोग तुरंत सफलता चाहते हैं जबकि हर बड़ा कार्य समय और धैर्य मांगता है। कुछ लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और अपने कार्यों को छोटा समझने लगते हैं। कई बार अंजलि जी, असफलता का डर भी लोगों को काम से दूर कर देता है। ऐसे में जब व्यक्ति अपने कार्य का उद्देश्य नहीं समझता तब उसे हर जिम्मेदार

0: बोझ लगने लगती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही वह अपने कार्य का महत्व समझ लेता है, वही काम उसे प्रेरणा देने लगता है।
1: जी हाँ कशिश, समाज में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी किसान की खेती न करने करे अगर कोई किसान खेती न करे तो भोजन कहाँ से आएगा। यदि सफाई कर्मचारी अपना काम न करे तो शहर और गाँव कैसे स्वच्छ रहेंगे। यदि शिक्षक न पढ़ाए तो ज्ञान कैसे फैलेगा। यदि मजदूर न हो तो सड़के पुल और घर कैसे बनेंगे। इसलिए हर काम का अपना एक अलग ही महत्व है और हमें काम को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए बल्कि काम को जीवन का हिस्सा बनाकर उसे पूरे उत्साह के साथ करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोता साथियों से चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है मेरा एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज हम काम को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सी बार लोग जो हैं वो काम को बोझ समझने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर कशिश लोग केवल बाहर जाकर कमाने वाले काम को ही महत्व देते हैं, लेकिन दोस्तों घर का काम भी उतना ही आवश्यक है। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा, घर की सफाई, बजट बनाना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनके बिना परिवार की व्यवस्था नहीं चल सकती। घर संभालना भी एक जिम्मेदारी है कशिश, और इसका भी सम्मान होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सी बार खाली मन अक्सर नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। जब व्यक्ति किसी अच्छे काम में व्यस्त रहता है तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है। काम करने से शारीरिक जो शरीर है वो सक्रिय रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में उद्देश्य जो है वो बन पाते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कई वर्षों की मेहनत छिपी होती है। एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, एक कलाकार वर्षों तक अपनी कला को निखारता है, एक वैज्ञानिक हजारों प्रयोग करता है और हर उपलब्धि मेहनत की नींव से ही खड़ी होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बताना चाहेंगे साथियों को कि जिस व्यक्ति के जीवन में काम होता है उसके भीतर आत्मसम्मान भी होता है। साथियों, अपने परिश्रम से अर्जित सफलता का आनंद किसी भी सुविधा से अधिक होता है। मेहनत से कमाई गई रोटी का स्वाद अलग ही होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें संघर्ष, ईमानदारी और आत्मगौरव की भावना छिपी हुई होती है। हम देखते हैं कि काम हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करता है अंजलि जी, और समाज में कह सकते हैं कि सम्मान भी प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों जन्म से महान नहीं होता, उसका निरंतर प्रयास, सीखने की इच्छा और मेहनत उसे महान बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: कार्य के माध्यम से व्यक्ति नई नई चुनौतियों का सामना करता है, उनसे सीखता है और अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कठिनाइयां न आती हो। कभी थकान होती है, कभी असफलता मिलती है तो कभी आलोचना होती है, और कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से घबराए बिना आगे बढ़ता है वही अंत में सफल होता है। श्रोता साथियों, काम को आनंद के साथ कैसे हम बना सकते हैं जीना, तो दोस्तों यदि हम कुछ छोटी आदतें अपनाएं तो काम बोझ नहीं लगेगा। जैसे कि हर दिन की योजना हमें बना लेनी है कि हमें सुबह से लेकर रात तक क्या करना है। हर समय जो है वो एक समय का काम एक ही करना है।
1: बहुत
0: सी बार हम देखते हैं कि एक समय में हम दो काम करने लग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, काम के बीच में थोड़ा विश्राम करना है, अपने काम की अच्छाइयों को पहचानना है, नई चीजें सीखते रहना है और हर छोटी सफलता पर स्वयं को प्रोत्साहित करना है। ये ऐसी कुछ बातें हैं अगर जिसे हम अपनाएंगे तो काम के साथ साथ आनंद भी हम महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ साथियों काम व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसका निरंतर प्रयास, सीखने की इच्छा और मेहनत उसे महान बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: कर्म के माध्यम से दोस्तों व्यक्ति नई नई चुनौतियों का सामना करता है, समय का सदुपयोग करना जानता है, अनुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना के साथ साथ सकारात्मक सोच श्रोता साथियों उसके अंदर विकसित होती है। ये सभी गुण अंजलि जी नियमित कार्य करने पर ही विकसित होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हर काम का अपना सम्मान होता है। समाज में दोस्तों कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा, वो कह सकते हैं कि सम्मान के लायक ही माना जाता है। किसान खेत में मेहनत करता है तभी भोजन हमारी थाली तक पहुंचता है।
0: बिल्कुल,
1: सफाई कर्मचारी शहर और गांव को स्वच्छ रखते हैं और शिक्षक ज्ञान देते हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं। यदि इनमें से कोई भी अपना कार्य न करे अंजलि जी तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि महिलाओं के जीवन में काम का क्या महत्व है। श्रोता साथियों, महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह अनेक जिम्मेदारियां निभाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि परिवार उनके काम का सम्मान करे, जिम्मेदारी साझा करे और सहयोग दे तो उसका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दोनों बढ़ सकती है।
1: जी
0: श्रोता साथियों, काम का सम्मान तभी होगा जब हम काम करने वाले व्यक्ति का भी सम्मान करेंगे। आज कल युवा केवल बड़ी नौकरी की प्रतीक्षा में छोटे अवसर छोड़ देते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी बनती है।
1: बिल्कुल,
0: सीखने वाला व्यक्ति कभी कभी कशिश खाली नहीं रहता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि हमारे युवा साथी मेहनत, ईमानदारी और लगन से कार्य करें तो देश का भविष्य उज्जवल बनता है।
0: बिल्कुल।
1: आज श्रोता साथियों, प्रतिस्पर्धा का समय है, ऐसे में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है बल्कि कौशल, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत भी जरूरी है। ऐसे में यदि हमारे युवा साथी हर कार्य को सीखने का अवसर समझने लगे तो वे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अंजलि जी, छोटी शुरुआत से घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे प्रयासों से ही होती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पा रहे हैं कि काम को किस तरीके से हमें बोझ नहीं समझना है और हमारे जीवन में काम का क्या महत्व है। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में यूं ही हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी।
1: हाँ।
0: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसे कि दोस्तों बातचीत का विषय काफ़ी ही बहुत महत्वपूर्ण है जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने काम को बोझ नहीं समझना है बल्कि काम के महत्व को समझना है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर यहाँ पर काम और समय के संबंध को हम जाने तो देखते हैं कि समय और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बिल्कुल
0: जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है अंजलि जी, वो अपने कार्य को भी बेहतर ढंग से पूरा कर पाता है। समय पर किया गया कार्य दोस्तों सफलता की संभावनाएं को बढ़ा देता है, जबकि टालमटोल करने वाला व्यक्ति पीछे धकेल देता है।
1: बिल्कुल
0: सही समय का प्रबंधन श्रोता साथियों कार्य को आसान बना देता है और तनाव भी इससे कम होता है। अंजलि जी,
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि गांव तभी आगे बढ़ेंगे जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।
0: बिल्कुल
1: किसान खेती को बेहतर बनाए, युवा कौशल सीखे, महिलाएं रोजगार से जुड़े, बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें,
0: जी
1: साफ सफाई, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और सामूहिक श्रम जैसे कार्य जो है वो पूरे गाँव को बदल सकते हैं। श्रोता साथियों एक प्रसंग आपको सुनाना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग माली से किसी ने पूछा कि आप इतनी उम्र में भी रोज बगीचे में काम क्यों करते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मैं केवल पौधे नहीं उगा रहा हूँ, मैं अपने जीवन की खुशियां भी सींच रहा हूँ। जिस दिन काम छोड़ दूंगा उस दिन जीवन का उत्साह भी कम हो जाएगा।
0: जी हाँ।
1: ये उत्तर हमें ये सिखाता है श्रोता साथियों कि काम केवल रोजगार नहीं है बल्कि जीवन की ऊर्जा भी है। यदि हर व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे तो समाज में भ्रष्टाचार कम होगा, काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, विश्वास मजबूत होगा, देश की प्रगति तेज होगी और सबसे बड़ी बात कि हर व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करेगा। हम देखते हैं कशिश के काम का भी बोझ नहीं होता, बोझ हमारी नकारात्मक सोच बनती है।
0: जी जी।
1: जब हम काम को केवल मजबूरी नहीं बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और समाज की सेवा का माध्यम मानते हैं तब वही काम हमारी पहचान बन जाता है।
0: बिल्कुल
1: मेहनत से भरे हाथ कभी खाली नहीं रहते श्रोता साथियों, वे अनुभव, आत्मविश्वास, सम्मान और संतोष से भर जाते हैं। जीवन में हमें हर दिन कुछ नया करने का अवसर मिलता है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन काम से भागने के बजाय उसे हमें अपनाना होगा, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है।
0: जी
1: याद रखिए श्रोता साथियों कि काम से थकान हो सकती है लेकिन बिना काम के जीवन में न तो उद्देश्य बचता है और न ही आत्मसम्मान और न ही प्रगति की राह।
0: बिल्कुल
1: इसलिए हम सभी को हर कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ पूरा करना है।
0: जी
1: अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो देखते हैं कि काम हमें मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। दोस्तों नियमित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सक्रिय और संतुलित रहता है।
1: बिल्कुल
0: जब हम किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में लगे रहते हैं साथियों तो हमारा मन सकारात्मक रहता है।
1: बिल्कुल
0: इससे हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही जीवन में उत्साह भी बना रहता है। अंजलि जी, काम और सफलता का भी एक संबंध है। हम देखें तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर उपलब्धि के पीछे निरंतर मेहनत, धैर्य और समर्पण होता है।
1: बिल्कुल
0: जो लोग केवल परिणाम की चिंता करते हैं साथियों वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने कार्य पर ध्यान देते हैं सफलता स्वयं उनके पास आती है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए लक्ष्य पर ध्यान रखने के साथ साथ साथियों कार्य की गुणवत्ता पर भी बराबर आपको ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे लिए समझना आवश्यक है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन या पद नहीं है बल्कि कर्म करने की आदत है।
0: बिल्कुल
1: परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती हैं श्रोता साथियों, लेकिन काम करने का हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में ही होता है।
0: जी जी।
1: जो व्यक्ति हर जिम्मेदारी को सीखने का अवसर मानता है वह धीरे धीरे कशिश अपने भीतर धैर्य, आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच का ऐसा खजाना बना लेता है।

0: जिसे कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता।
1: बिल्कुल।
0: वही जो व्यक्ति हर कार्य में केवल कठिनाइयां दिखता है वह अवसरों के बीच रहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए बदलाव काम में नहीं बल्कि अपनी सोच में लाने की आवश्यकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि उन्हें काम में आनंद नहीं आ रहा है, तो काम में आनंद कैसे लाया जाए। दोस्तों, यदि हम केवल मजबूरी में काम करेंगे तो वो बोझ ही लगेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि हम अपने कार्य को सीखने से, सेवा करने और स्वयं को बेहतर बनाने के माध्यम से मानेंगे तो उसी कार्य में हमें आनंद आने लगेगा।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, जैसे कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, नई बातें सीखना, अपनी प्रगति पर ध्यान देना और हर दिन कुछ बेहतर करने का प्रयास करना, ये सब जो चीजें हैं वही कार्य को रुचिकर बना देते हैं।
0: जी जी।
1: आज हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कार्य में मन नहीं लगा पाते। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है श्रोता साथियों कि हम उस कार्य को रुचि से नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा एक ये कि जब हम कार्य में मन नहीं लगाते हैं तो ये होना स्वाभाविक है कि हम उस कार्य को जल्दी नहीं कर पाएंगे और सही समय पर नहीं कर पाएंगे।
0: जी हाँ कशिश, यह भी याद रखना चाहिए कि काम का वास्तविक मूल्य केवल उसकी कमाई से नहीं बल्कि उससे मिलने वाले अनुभव, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति योगदान से तय होता है।
1: बिल्कुल।
0: एक ईमानदार किसान की मेहनत, एक शिक्षक का समर्पण, एक गृहिणी की दिन रात की मेहनत, एक मजदूर का पसीना, एक सफाई कर्मी की सेवा और एक विद्यार्थी की लग्न, ये सभी मिलकर समाज को मजबूत नींव तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से करे तो केवल उसका ही जीवन नहीं बल्कि पूरा समाज अधिक व्यवस्थित, संवेदनशील और समृद्ध बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है हमारी, ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब काम कठिन लगेगा, परिणाम देर से मिलेंगे और मेहनत जो है कशिश उसकी सराहना नहीं होगी। ऐसे क्षणों में भी हार मानने के बजाय ये याद रखें कि प्रकृति भी बिना रुके अपना काम करती रहती है। सूरज रोज उगता है, नदियां निरंतर बहती है, पेड़ वर्षों तक चुपचाप फल और छाया देते हैं। प्रकृति का यही संदेश है कि कर्म करते रहना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर प्रयास करने वाले लोगों की पहचान समय स्वयं बनाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी काम की भूमिका देखी जाती है। जैसे कि दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिक के कार्य और संस्कृति पर निर्भर करती है।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ लोग ईमानदारी और लगन से काम करते हैं अंजलि जी, वहाँ विकास तेजी से होता है, और वहीं लापरवाही, आलस्य और गैर जिम्मेदार समाज को पीछे ले जाती है। यदि श्रोता साथियों, प्रत्येक नागरिक अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विज्ञान और तकनीक सहित हर क्षेत्र में प्रगति संभव है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आज हम केवल मेहनत करने का नहीं बल्कि काम का सम्मान करने का संकल्प लें, अपने काम के साथ साथ दूसरों के श्रम का भी आदर करें, बच्चों में मेहनत की आदत विकसित करें। इसी के साथ श्रोता साथियों, युवाओं को भी ईमानदारी के कार्यों में छोटे प्रयास करने की जरूरत है। अपने परिवार में ऐसी सोच बनाएं जहां जिम्मेदारियां बोझ नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग का प्रतीक बने। जब काम खुशी, सेवा और आत्मविकास का माध्यम बन जाएगा तब जीवन में शिकायतें कम और संतोष अधिक रहेगा। याद रखिए श्रोता साथियों कि काम हमारे जीवन का आभार नहीं, भार नहीं, हमारी पहचान है। काम हमारी मजबूरी नहीं, हमारी क्षमता का प्रमाण है।
1: बिल्कुल,
0: कर्म भी वह दीपक है कशिश, जिसकी रोशनी से व्यक्ति अपने भविष्य, अपने परिवार और पूरे समाज के जीवन को उज्जवल बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जीवन में हर दिन एक नया अवसर जो है वो हमारे पास आता है, कुछ सीखने का, कुछ बनने का, तो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का।
1: बिल्कुल,
0: इन सभी अवसरों का आधार हमारे कर्म है। जब हम अपने काम को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के रूप में करते हैं, उसे निखारने के लिए करते हैं, तब साधारण से जो चीजें हैं वो असाधारण परिणाम देने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आवश्यक है कि हम काम की मात्रा से अधिक उसकी गुणवत्ता, अपनी निष्ठा पर ध्यान दें।
1: जी हाँ,
0: दुनिया अक्सर यह नहीं याद रखती कि हमने कितना काम किया बल्कि यह याद रखती है कि हमने अपना काम कितनी ईमानदारी, लगन और जिम्मेदारी के साथ किया है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि धन और प्रसिद्धि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी श्रोता साथियों अपने कार्य को पूरी लगन से पूरा करने से मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे कार्य से किसी का जीवन आसान हुआ है या समाज को लाभ पहुंचा है, तब वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। तो ऐसे में अंजलि जी, कहा जा सकता है कि काम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यदि हम काम को बोझ समझकर करेंगे साथियों, तो वह हमें थका देगा, तनाव को बढ़ाएगा और हमारी कार्य क्षमता को कम कर देगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इसके विपरीत यदि हम काम को सीखने, आगे बढ़ने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मानेंगे, तो वही काम आनंद और संतुष्टि का स्रोत बन जाएगा।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे लिए समझना जरूरी होगा कि जीवन में आराम का आनंद वही व्यक्ति सही मायने में महसूस कर सकता है जिसने मेहनत की हो। बिना परिश्रम की मिली सुविधाएं क्षणिक संतोष दे सकती हैं, लेकिन मेहनत से अर्जित उपलब्धियां जीवन भर आत्मगौरव का कारण बनती है।
1: जी हाँ,
0: कठिन परिश्रम का फल केवल आर्थिक लाभ नहीं देगा बल्कि उससे हमारा आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, धैर्य और संतोष करने का साहस भी विकसित होगा।
1: बिल्कुल,
0: और यही गुण व्यक्ति को हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि हर कार्य का अपना महत्व होता है। ईमानदारी, लगन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ किए गए कार्य व्यक्ति को सफलता के साथ साथ सम्मान और आत्मविश्वास दिलाते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, कठिनाइयां हर काम में आती है, लेकिन धैर्य और परिश्रम से ही उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए हमें किसी कार्य से घबराना नहीं है बल्कि उसे पूरे मन, उत्साह और जिम्मेदारी के साथ करना है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि सफलता का रास्ता भाग्य की प्रतीक्षा से नहीं, कर्म की निरंतर यात्रा से बनता है।
1: बिल्कुल,
0: जो हाथ काम करने से नहीं डरते वे एक दिन इतिहास भी रचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत उत्साह से कीजिए, हर जिम्मेदारी को मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए और ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। यही सच्ची प्रगति है और यही आत्मसम्मान है और यही एक सार्थक जीवन का सुंदर मार्ग भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हमारे साथियों को हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.1 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

के निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल हैं तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शमशुल कमर राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फेजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीमजी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से विकास बंसोड़ी, रेखा बंसोड़ी, अदिति बंसोड़ी और वैभव जी सिंधे। खंडाला से जुड़ रहे हैं आकाश सरोदी और प्रिया सरोदी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पंडपुर सिटी से जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची जी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ गोड़ानी, अर्चना गोड़ानी, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंडे और प्रतिभाजी गोड़ानी। गंजुड़वारा से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंजाब से। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, गीत की बोल ही तुमने किसे से प्यार किया है। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कोका बलाई से, उत्तम सिंह जंगिल, मोरज जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजित कुमार जंगिल, आयुष जंगिल, नंदिनी जंगिल, सुकरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित जंगिल, सुकुन जंगिल, आयुषी जंगिल, आरुषि जंगिल, ओशिका जंगिल, आदित्य जी जंगिल और अंजलि जी जंगिल। इस गीत के अनुरोध करता है वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायराजी सुरोशी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सवित कुमार दामोदर, सादा पवन दामोदर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली और निशा जी। इस गीत के अनुरोध करता है पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कोपरगांव से सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी जी मालोदी। इस गीत के अनुरोध करता है आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभीर चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं यूपी से सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, पवन जी, योगेश और काजगस जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तुमने कभी किसी से प्यार किया है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बागपत सी। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत की बोली है जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत को आवाज दी है नितिन मुकेश और लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है जनकपुरी सहारनपुर से, जोन टिकिस्टो, रोज टिकिस्टो, पल टिकिस्टो, विलेज टिकिस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से उभय पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांशी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मलियाना सरथाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। सरथाना मेरठ से जुड़ रही हैं आदि जैन, अंश जैन, भव्य जी जैन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडितपुर सिटी से प्रशांत सिंधी, सिंता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़गे जी। इस गीत के अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित समर, सचिन मास्टर समराज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा और श्वेता जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरबीन शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। मजनू का टीला से जुड़ रही हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहेजी मलिक। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपनी फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों अभी हमने लता जी और मुकेश जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम ही मेरे जीवन साथी, गीत के बोल ही ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रसाद वर्मा, मुरली अमित जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं यतला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपन्नम जयसवाल और दुर्गेश्वरी जयसवाल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। छत्रपति संभाजीनगर से जुड़ रहे हैं महेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराजी इंगले। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन जी और प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से संतोष भाड़की, सुकन्या, सरिता भाड़की जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बोरखेड़ा पित्रामल से। फिल्म का नाम है दिलवाले, गीत के बोल ही जीता था जिसके लिए। इस गीत की फरमाइश करता है नेहा जैन, दीपक मयंग मुनत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुनत, विनोद जी मुनत और भी श्रोता साथी जुन्नाचार्य गंजुडवारा से, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमराही जी। इसी बीच जुन्नाचार्य जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया, सोनू जी भाटिया। गाजियाबाद से जुन्नाचार्य हैं शिषपाल जी। इस गीत की अनुरोध करता है बलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री जी। इसी बीच जुन्नाचार्य हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जनतीत कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और कमरजीत सिंह। इसी बीच जुड़नाचार्य हैं बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इस गीत के अनुरोध करता है रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जीता था जिसके लिए।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, गीत के बोल हैं कभी तू छलिया लगता है। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास, बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से श्याम कीटे, वंदना कीटे, भाविका जी कीटे। इस गीत की अनुरोध करता है खडवा मध्य प्रदेश से बेबी सालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी सिकरा डावर। इस गीत की अनुरोध करता है मरहरा से नसी हसीब अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडू गोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, भाविका जी सिक्का और डुग्गू जी सिक्का। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं यासीन हाशमी, नवजा बेगम, तौसीफ जी, तोइनूर जी और कलीम अंसारी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया, गीता रानी झाजोरिया, गंदीप झाजोरिया, अर्जुन झाजोरिया और गुड्डू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रही हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जी जाधव और संगीता जी जाधव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM।

दोस्तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करते हो आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में हमारा आपसे बना रहता है रोजाना सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं तो आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको लिखना है सिर्फ फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिख कर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। नंबर फिर से बताना चाहूँगी क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाव और फरमाइश के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9460051234। तो जैसा कि सिलसिला आज भी श्रोता साथियों सुबह 11 बजे से हमारा आपके साथ बना हुआ है, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जुड़ना चाहूँगी और बढ़ना चाहूँगी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है नवाज शहर से, फिल्म का नाम है बेवफा, गीत के बोल हैं एक दिल रुबा है। इस गीत को आवाज़ दी उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं सुरेंद्र सांधु, नीता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मेक्स जी, और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। राजकोट से हैं मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट, जासमिन भट्ट, धनोरी, विटाली से हैं नशिल नादुरा, बुलढाणा महाराष्ट्र से, भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, प्रेम श्रेया, श्रुति जी। सिरसा से जुड़ रहे हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। पटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकर साहू, कर्ण राहुल साहू, चंपा साहू, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गुरु मधुरकर, यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरव अर्पिता जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था दीवाना, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है चुकनटी बुलंदशहर से। फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं, श्रोता साथियों, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। फिल्म का नाम है साजन। इस गीत को आवाज़ दी कुमार सानू, अलका याग्निक जी ने, और फरमाइश करता जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धवासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्के दले, जीविका दले, सानिका दले, पूना वाले बुढ़े से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी। जौनपुर से जुड़ रहे इरशाद अमन अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इशरा, अजरा तबस्सुम, नवेद इरशाद। बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, रोहिणी अंसारी, आफिया परवीन जी। श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, गणेश अविका जी। पूनावले से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका, सायसा सोनवाने, विशाखा मंगलकर जी। कुंभार गली कोल गांव से हैं पांडु चंदन, औषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। कलानोड़ से जुड़ रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से करता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, बताना चाहूंगी नरवेल महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दीवानगी। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, पायलिया ओहो हो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निमा नवाड़कर, विशाल नवाकर, महाराष्ट्र से नारायण इंग्ले, सोपान तारडे, आशीष मोहेरकर जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री मेहतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोहल, बीपी कुलथे जी। और भी साथी हैं जो अम्बाला से जुड़ रहे, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरशब्द सिंह राहुल, कुमार हेड़ा से जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना असम, अक्सा नाजमा, आफिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पायलिया ओहो हो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, बताना चाहूँगी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों दिल, गीत के बोल है मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं ये। इसी बीच बक्सर बिहार से सफदर अंसारी, खातून अंसारी, रमेश साहू, सुरित साहू, डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोना मरीदाबाद, दानिश अंसारी जी बक्सर से हैं, श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से हैं, एजिरा अंसारी, खैतून महतूब अंसारी, अजीत कसाना, मैरदीप, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं, विक्रम कडवासा, सचिन कडवासा, सतीश योगेश, युधव कडवासरा जी, बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी जुड़ रहे हैं, अस्तपुरा जिला मऊ से मजरअली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, सादिक अंसारी, गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन और भी साथी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। महाराष्ट्र से हैं गंगाधर येमकरे, प्रमोद येमकरे और प्रदीप येमकरे। गंजुटवारा से शमशिल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान। नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांटी, रीता कुमारी थांडी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका माणी थांडी जी। धनुरी तेलीवारा से निशा सलमानी, नुशा सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी। दुलोपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सीधल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहितिक, बलवीर सिंह जी। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मणिपुरी, राजादास मणिपुरी, दात्री के से रानी मणिपुरी जी। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश सिंह, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के प्यारे से गीत को, गीत के बोल हैं मुझे नींद ना आए। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है सिंधी बुजुर्ग से। फिल्म का नाम है दोस्तों बताना चाहूंगी, बेशर्म। गीत के बोल हैं दिल का जो हाल है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़ादकर, शुभम वड़ादकर, पुन्नू वड़ादकर जी। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, मॉडल टाउन करनाल से सुधनूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी, और भी श्रोता साथी हैं आकोट से, विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबीराव, लोरमी जी जड़ी छत्तीसगढ़ से हैं, कमलकांत मरावी, पिलमेरा मरावी, नेहा पुष्परा, ऋषभ मरावी जी। जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नशीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनोर अंसारी जी। पोटा कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। जुड़ रहे हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बेटी वाड़ोदे जी। रोहतक कॉलोनी से जुड़ रहे हैं एकता कॉलोनी से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी बोट, अंकित कागड़ा जी। दातागंज बदायूं से जुड़ रहे हैं गनगोला से इसरत खान, शायरा बेगम, रहब खान, शावरीन खान, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान, आजम खान, अरहान खान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जरूर वरूर से हैं बाबा साहेब बड़ोते, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानेरे जी। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मगनपुरा झारखंड से हैं अब्बास आलम, आबजद अली और निशा और सभी घर के सदस्यगण जुड़ रहे हैं। आवारपुर से हैं शेख अबीब, छोटू भाई शेख, सिरजान बेगम, फिजान शेख, फारूक शेख, वशिम शेख, अफशाना शेख, अशमिरा शेख, इरफान शेख, जिन्नत शेख, फरहान शेख, अब्दुल्लाह लोहेवाला और साजिदा शेख जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आशीर्वाद, विवेक शिवास, बेबी आशीष शिवा। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। बिहार कॉलोनी दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राज, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, प्रेम प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभा गुणाने जी। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्र रामेकर और समस्त रामेकर परिवार सदस्यगण। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चुन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। अमरावती महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्र रामेकर और समस्त रामेकर परिवार सदस्यगण। पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी जी, सोनू मनु, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, अरुश्वरी, दिनेश जी। आगरा से जुड़ रहे सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर जी। कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया और दिया पीहू चौरसिया जी। इसी बीच जुड़ रहे बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, आकाशा आकांक्षा शर्मा जी, मनीष वर्मा, दशरथ साहू, वेदही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, पायल जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार टावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल का जो हाल है। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में इस गीत के साथ अनुमति कार्यक्रम से जाने की। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा, क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है, इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथनें दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दी, परंतु जीभा केवल एक दी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि पुन, आपरे भाई बहन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपरी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति पुन, आपरे भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपरी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपरी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है उत्साह को उदासी से बदलने वाले मन पर काम करते रहे। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह बड़े उत्साह के साथ उठते हैं, बड़े सपने देखते हैं, कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही उत्साह कम होने लगता है और उसकी जगह उदासी, निराशा और हताशा लेने लगती है। हम सोचने लगते हैं कशिश कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने मन के भीतर चल रही होती है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो जीवन की आधी चुनौतियों को जीत लेता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि उत्साह को उदासी में बदलने वाले मन पर हमें काम कैसे करना है और हमारे युवा साथी इसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों को मनोरंजन करवाते हैं प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: कोई असफलता मिल जाती है, किसी का साथ छूट जाता है, या फिर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, या फिर हम देखते हैं कि हमारे युवा साथियों के जीवन में चुनौती आ जाती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: जो हमारे उत्साह को धीरे धीरे उदासी में बदल देती है साथियों। और ये जो परिवर्तन है वो अक्सर बहुत धीरे होता है, लेकिन कई बार हमें ये पता भी नहीं चलता है कि जो मन कल तक उत्साह से भरा हुआ था वही आज निराशा और उदासी से गिर गया है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। शरीर थक सकता है, परिस्थितियाँ कठिन हो सकती है, लेकिन यदि मन मजबूत है तो व्यक्ति हर कठिनाइयों का सामना कर सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए उनके पास कोई जादू शक्ति नहीं थी, उनके पास केवल एक मजबूत और सकारात्मक मन था। मन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नई राह दिखाता है और कठिन समय में हिम्मत देता है। लेकिन जब मन कमजोर होने लगता है तब छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि हम मन की शक्ति के बारे में बात करते हैं, यही जानते हैं उत्साह क्यों कम होने लगता है। तो श्रोता साथियों, उत्साह कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक भावना है जिसे लगातार बनाए रखना पड़ता है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: जब हमारी उम्मीदें बहुत गहरी हो जाती है और परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते तब उत्साह कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता देर से मिलती है और यही देरी हमें निराश करने लगती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो ये तो हमने बात की श्रोता साथियों कि उत्साह हमारा कम क्यों होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर तुलना करने की आदत की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि वर्तमान में तुलना करने की आदत हमारे युवा साथियों में काफी हद तक बढ़ चुकी है और जिसके कारण वे उदास भी रहने लगे हैं। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग दूसरों की सफलता देखते हैं लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखते। जागृति जी, दूसरों की उपलब्धियों को देखकर कई युवा साथी जो हैं वो स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन्हें कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। श्रोता साथियों, किसी को सफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वह असफलता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने के बजाय आपको स्वयं के विकास पर ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि तुलना की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर हम अपनी जिंदगी को कमतर समझते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। किसी की नौकरी, किसी का घर, किसी की पढ़ाई, किसी की लोकप्रियता देखकर हम खुद को पीछे मान लेते हैं। लेकिन श्रोताओं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का अध्याय देखकर अपनी पूरी किताब का फैसला मत कीजिए। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तब हम अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं। हमारी नजर केवल अपनी कमियों पर टिक जाती है। याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा नहीं है। आपकी पहचान आपकी अपनी है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से चली रही है और हम जान रहे हैं कि मन की शक्ति को पहचानना हमारे युवा साथियों के लिए क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही जैसा कि विषय भी आज के कार्यक्रम का बड़ा रोचक है कि उत्साह को उदासी से बदलने वाले मन पर काम हमें करते रहना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों न हमारे श्रोताओं को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उत्साह को उदासी से बदलने वाले मन पर काम करते रहें। हमने जाना था मन की शक्ति को समझना क्यों जरूरी है, साथ ही उत्साह क्यों कम होने लगता है, तुलना करने की आदत उदासी बढ़ाती है। यही जानते हैं नकारात्मक सोच कैसे उत्साह छीन लेती है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि कशिश, मन में आने वाला विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम हर समय यही सोचते रहे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। दोस्तों,
1: बिल्कुल,
0: नकारात्मक सोच एक ऐसे दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारे उत्साह को खा जाती है। ये हमें अवसरों से दूर करती है और डर के दायरों में कैद करती है।
1: हाँ।
0: जबकि सकारात्मक सोच हमें हर समस्या में समाधान खोजने की शक्ति देती है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि समस्याओं के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखा जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को उनके मन पर काम करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही साथियों मन को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित अभ्यास करना जरूरी होता है। जैसे कि यदि हम मन की देखभाल नहीं करेंगे जागृति जी, तो चिंता, तनाव और निराशा हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे।
0: बिल्कुल
1: साथियों, मन पर काम करना एक दिन का कार्य वैसे तो नहीं होता, लेकिन आपको ये कार्य जरूर करना है और ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्योंकि जब हम मन पर काम करते हैं तो हम स्वयं परिवर्तन देखते हैं जागृति जी, देखते हैं कि हम अपने कार्य पर फोकस करने लग जाते हैं, हमारे सारे कार्य जो है वो सफलता पूर्वक होते हैं, साथ ही हमारा मन भी शांत रहता है इससे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि यदि हम अपने मन को मजबूत नहीं बनाएंगे तो जीवन की चुनौतियां हमें बार बार कमजोर करेंगी। इसलिए मन पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर पर काम करना। जानते हैं श्रोता साथियों कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो मन को मजबूत और उत्साही बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य में बांटना भी जरूरी है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में उत्साह बनता है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो प्रेरित करते हो, आगे बढ़ने की बात करते हो और मुश्किल समय में हिम्मत देते हो।
1: जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों असफलता को हमें शिक्षक बनाना है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जागृति जी जिसने असफलता का सामना न किया हो। दोस्तों असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
0: जी हाँ,
1: जो लोग असफलता से सीखते हैं वे आगे चलकर बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं, लेकिन वही जागृति जी जो लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं वे आगे बढ़ने से भी रुक जाते हैं।
0: और यही हम बात करेंगे कि हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। श्रोताओं, कृतज्ञता हमें कमी नहीं बल्कि उपलब्धियों पर ध्यान देना सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे मन में संतोष और खुशी बढ़ती है कशिश। कहा गया है कि जो है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो।
1: जी जी।
0: साथ ही प्रकृति से जुड़िए क्योंकि प्रकृति मन को शांति देती है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, खुली हवा और सूरज की रोशनी मन को नई ऊर्जा देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें अपनी रुचियों को समय देने की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई रुचि जरूर होती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन वर्तमान में श्रोता साथियों हमारी जो जीवन शैली है श्रोता साथियों वो काफी व्यस्त हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे जो युवा साथी हैं वो अपनी रुचियों पर समय ही नहीं दे पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आपकी भी किसी क्षेत्र में रुचि है, जैसे कि गाना गाना आपको पसंद है, चित्रकला आपको पसंद है, या फिर कोई रचनात्मक गतिविधि में आप कह सकते हैं कि अपना मन लगाना चाहते हैं, तो ऐसा आप जरूर करें क्योंकि ये आपके मन को प्रसन्न रखेगा। जागृति जी, जब हम अपनी पसंद की कार्य करते हैं तो इससे हमारा तनाव भी कम होता है।
0: बिल्कुल,
1: और उस कार्य के प्रति हमारा जो उत्साह है वो भी बढ़ता है। देखते हैं कि कई बार अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सहायता करना होता है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें ये एहसास हो जाता है कि हम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और यही भावना जागृति जी आत्मविश्वास और खुशी दोनों को बढ़ाती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियां समय और धैर्य मांगती है।
1: बिल्कुल,
0: बीज बोते ही फल नहीं मिलता श्रोता साथियों, पहले पौधा बनता है फिर वृक्ष और उसके बाद फल आते हैं। इसी तरह सफलता भी धीरे धीरे मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे कि धीरे रखिए, समय हर मेहनत का फल देता है। यदि आज आपके मन में उदासी है तो घबराइए मत, उदासी कोई स्थायी मेहमान नहीं है कशिश, वो आती है और चली जाती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन यदि हम अपने मन पर लगातार काम करते रहेंगे तो उत्साह फिर लौट आएगा। याद रखिए श्रोताओं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अपने मन को हारने न देने की है। जब मन मजबूत होगा तब परिस्थितियां चाहे जैसी हो आप आगे बढ़ते रहेंगे। उत्साह कोई चमत्कार नहीं बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सकारात्मक प्रयासों का परिणाम है। इसलिए अपने मन की देखभाल कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए।
1: जी हाँ, क्योंकि युवा साथियों, जीवन में कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि सब आपके विरुद्ध हैं, लेकिन ऐसे में आपको याद रखना है कि आपका मन आपका ही सबसे बड़ा साथी है।
0: जी हाँ,
1: अपने मन को हार मानने की आदत मत दीजिए, उसे संघर्ष करने, सीखने और आगे बढ़ने की आदत डलवाइए।
0: बिल्कुल,
1: जब उत्साह कम हो जाए तब रुकिए मत साथियों, जब निराशा पास आए तो स्वयं को संभालिए और जब असफलता मिले तब फिर से शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों याद रखिए कि उत्साह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा अपने आप बनी रहे।
0: बिल्कुल,
1: इसे हर दिन अपने विचारों, कर्मों और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जीवित रखना पड़ता है।
0: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुनवा देते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि उत्साह की लो को कभी बुझने मत दो, हर दिन खुद पर काम करते रहो, क्योंकि मजबूत मन ही सफल जीवन की पहचान है। इसी संदेश और इसी उम्मीद के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतीनु खवानु सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माता पिता, दादा दादी, शिक्षक और परिवार के हर सदस्य से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बच्चों की गलती पर प्रतिक्रिया कैसे दें।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को डांट कर नहीं समझाकर बड़ा बनाया जाता है। हर गलती एक नई सीख लेकर आती है, बस उसे सही दिशा देने वाला चाहिए होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में किस संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की गलती पर हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम जैसा कि जानते हैं कि बचपन जीवन का वह खूबसूरत पड़ाव होता है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, जब बोलना सीखता है साथियों तो शब्द गलत बोलता है, जब वह पढ़ना लिखना शुरू करता है तो गलतियां करता रहता है और यही गलतियां धीरे धीरे उसे समझदार और आत्मविश्वासी बनाती हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि गलती करना बचपन का स्वाभाविक हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है अंजलि जी कि बच्चों की गलती से ज्यादा असर हमारी प्रतिक्रियाओं का बच्चों पर होता है। यदि बच्चा गलती करे तो हम उस पर तुरंत गुस्सा कर देते हैं, उसे डांट देते हैं या उसे अपमानित कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों वह गलती से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर यदि हम धैर्य और समझदारी से उसे समझाएंगे तो वही गलती उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात आती है कि क्या बच्चों से गलती होना सामान्य बात है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हाँ, बच्चों से गलती होना बिल्कुल सामान्य बात है। कोई भी बच्चा जन्म से समझदार नहीं होता है, वो अपने अनुभवों, परिवार, विद्यालय और समाज से सीखता है। जिस प्रकार कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है उसी प्रकार बच्चे का व्यवहार और व्यक्तित्व भी समय के साथ विकसित होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो कई बार गिरता है। क्या श्रोता साथियों हम उसे गिरने पर डांटते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि गिरकर ही वह संतुलन बनाना सीखेगा। ठीक उसी तरह कशिश जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी वह छोटी छोटी गलतियों से सीखता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार बच्चा जिज्ञासा के कारण गलती करता है, वह जानना चाहता है कि ये चीज कैसे काम करती है। कभी वह किसी की नकल करता है, कभी दोस्तों के कहने पर कुछ कर बैठता है और कभी बिना सोचे कोई निर्णय ले लेता है।
0: जी जी।
1: इसका मतलब यह नहीं होता है कि बच्चा बुरा है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर गलती पर हम उसे शरारती, नालायक या बेकार कहेंगे तो धीरे धीरे वह खुद को भी अपने बारे में यही सोचने लगेगा। इसलिए गलती को बच्चों की पहचान मत बनाइए। गलती केवल एक घटना है, उसका पूरा व्यक्तित्व नहीं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही बात करते हैं कि जब बच्चे गलती करते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया होनी क्या चाहिए। तो दोस्तों किसी भी गलती के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर होता ये है अंजलि जी कि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो हम बिना कुछ सोचे तेज आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं या डांटने लग जाते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन गुस्से में श्रोता साथियों लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। सबसे पहले आप स्वयं को शांत कीजिए। यदि श्रोता साथियों जरूरत हो तो 2 मिनट रुक जाइए, जब आपका मन शांत होगा तभी आप बच्चे को सही ढंग से समझा पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए कि बच्चा पहले हमारे चेहरे के भाव पढ़ता है, फिर हमारे शब्दों को सुनता है और फिर हमारे चेहरे पर होने वाले गुस्से को देखता है। तो श्रोता साथियों उसका ध्यान हमारे सीख पर नहीं बल्कि हमारे डर पर रहेगा। इसके बाद आप बच्चे के पास बैठिए और उससे प्यार से पूछिए कि क्या हुआ, तुम मुझे पूरी बात बताओ। इतना सुनते ही अंजलि जी कई बच्चे अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें समझना चाहता है, केवल डांटना नहीं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यदि बच्चा सच बोलता है तो उसकी ईमानदारी की सराहना करना भी बहुत जरूरी है। आप उसे ये महसूस कराइए कि सच बोलना हमेशा अच्छी बात होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात आती है, क्या बच्चों की पूरी बात सुनना जरूरी है? तो श्रोता साथियों हाँ बिल्कुल जरूरी है। कई बार हम केवल आधी बात देखकर या किसी दूसरे की बात सुनकर ही बच्चे को दोषी मान लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर वह ऐसा क्यों कर बैठा? मान लीजिए कि बच्चे ने स्कूल में किसी दोस्त को धक्का दे दिया, लेकिन यदि कशिश हम यही सुनकर उसे डांट देंगे तो शायद हम पूरी सच्चाई से अनजान रह जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है कि पहले किसी और ने उसे परेशान किया हो या वह खुद किसी बात से दुखी हो। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गलती सही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सही निर्णय लेने से पहले पूरी बात जानना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: बिना सुने फैसला करना केवल बच्चे के साथ ही नहीं किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं है। एक अच्छी आदत यह हो सकती है कि हर बार बच्चे से पूछे कि तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है इसमें गलती कहाँ हुई। ऐसे सवाल बच्चे को सोचने की आदत भी सिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी बच्चा गलती करे तो पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर उसके बाद उसे समझाइए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही है। ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही अब बात आती है कि क्या हर गलती पर डांटना या सजा देना सही तरीका है। तो श्रोता साथियों, अनुशासन जरूरी है, लेकिन अनुशासन का मतलब केवल डांटना या सजा देना नहीं होता है। यदि हर छोटी बड़ी गलती पर केवल डांट ही मिलेगी तो बच्चा धीरे धीरे गलती सुधारने के बजाय उसे छिपाने की कोशिश करने लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चे कशिश डर के कारण झूठ बोलने लगते हैं, कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना बंद कर देते हैं, तो कुछ इतने डर जाते हैं कि कोई नया काम करने की हिम्मत ही नहीं करते। इसलिए समझना जरूरी है कि हर गलती की गंभीरता अलग होती है। यदि बच्चे से अनजाने में दूध गिर गया हो तो क्या उसे उसी तरह डांटना चाहिए जैसे किसी गंभीर गलती पर? तो बिल्कुल नहीं। छोटी गलतियों को सिखाने का अवसर बनाइए, बच्चे को समझाइए कि अगली बार सावधानी कैसे रखनी है। कई बार बच्चों को उसकी जिम्मेदारी समझा देना ही सबसे बड़ी सीख होती है। यदि उसने कमरा गंदा किया है तो उसे स्वयं साफ करने दीजिए। यदि किसी का सामान खराब किया है तो उसे माफी मांगने और उसकी भरपाई करने की सीख दीजिए। तो यही वास्तविक अनुशासन है।
1: जी हाँ दिले जी, इससे क्या आगे अगर बात करें कि बार बार गुस्सा करने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, तो श्रोता साथियों, कई बार हम माता पिता ये सोचते हैं कि यदि बच्चे को बार बार डांटेंगे तो वह जल्दी सुधर जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सच तो ये है अंजलि जी कि लगातार गुस्सा और डांट बच्चे के मन पर गहरा असर छोड़ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि डांट सुनकर बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि वे ये सोचने लगते हैं कि जब बिना वजह डांट पड़ रही है तो सही और गलत में क्या ही फर्क पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: वहीं कुछ बच्चे इतने डर जाते हैं कि इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और वे किसी भी नए काम को करने से घबराते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, बच्चों को अनुशासन आप जरूर सिखाइए, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। गुस्सा क्षण भर के लिए चुप करा सकता है, लेकिन समझदारी जीवन भर के लिए सुधार सकती है।
0: बिल्कुल। यही कशिश, अब बात आती है माता पिता और परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो श्रोता साथियों, बच्चे सबसे ज्यादा अपने परिवार से सीखते हैं। वे केवल हमारी बातें ही नहीं सुनते बल्कि कशिश हमारे व्यवहार को भी देखते हैं। यदि घर में बड़े एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं और शांति से समस्याओं का समाधान करते हैं, तो बच्चे भी वही आदतें सीखते हैं। यदि माता पिता हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, गुस्सा करेंगे या छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करेंगे तो उसका असर बच्चों के व्यवहार पर भी दिखाई देगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए परिवार का वातावरण प्रेम, विश्वास और सहयोग से भरा होना चाहिए।
1: जी जी।
0: बच्चों के साथ रोज कुछ समय जरूर बिताएं, उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या हुआ, उन्हें किस बात की खुशी हुई और किस बात से दुख हुआ।
1: बिल्कुल।
0: जब परिवार में खुलकर बातचीत होती है श्रोता साथियों, तो बच्चे अपनी गलतियां भी छिपाते नहीं है। माता पिता को ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चे की हर छोटी उपलब्धि की सराहना करें, केवल गलती पर ध्यान देने के बजाय उसकी अच्छी आदतों की भी प्रशंसा करें।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चा अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ जरूर करें, इससे वह अच्छे व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि यदि बच्चा एक ही गलती को बार बार करता है तो केवल डांटना समाधान नहीं है। सबसे पहले माता पिताओं को अंजलि जी ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वह गलती दोबारा हो क्यों रही है।
0: बिल्कुल।
1: क्या बच्चे को बात ठीक से समझ नहीं आ पा रही है? क्या उसके दोस्तों का उस पर कुछ प्रभाव है? क्या वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है या फिर उसे अधिक समय और मार्गदर्शन की जरूरत है?
0: जी जी।
1: क्योंकि कई बार साथियों बच्चे को एक ही बात कई बार समझानी पड़ती है, वैसे तो ये बिल्कुल सामान्य है, ऐसे में धैर्य के साथ समझाने से अच्छी आदतें विकसित होती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर आप शिक्षक से भी बात करें और घर तथा स्कूल मिलकर बच्चे का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अंजलि जी, बच्चों को यह महसूस कराना होगा कि पूरा परिवार उनके साथ है और उनका उद्देश्य केवल उसे डांटना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाना है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों से कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि बच्चों का बचपन बहुत अनमोल होता है। यह वही समय है जब उनके मन में संस्कार, आदतें और आत्मविश्वास विकसित होता है। यदि इस समय उन्हें प्यार, सम्मान, धैर्य और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वे भविष्य में एक जिम्मेदार, संवेदनशील और अच्छे इंसान बनेंगे। इसलिए
1: हाँ।
0: अगली बार जब आपका बच्चा कोई गलती करे तो गुस्से के बजाय मुस्कुराकर उसकी बात सुनिए, उसे समझाइए और सही रास्ता दिखाइए। हो सकता है कि आपकी वही एक सकारात्मक प्रतिक्रिया उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए दोस्तों, बच्चों की हर गलती को सजा नहीं, सीख और संस्कार देने का अवसर बनाइए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम,

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब ही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवार। सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उन विषयों की जो हमारे समाज, हमारे विकास और हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं या किसी होटल में खाना खाते हैं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, कपड़े खरीदते हैं या किसी सेवा का लाभ लेते हैं, तो हमें बिल में एक शब्द दिखाई देता है, GST।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर लोग इसे केवल एक टैक्स समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि ये GST आखिर क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है और ये देश के विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं GST के महत्व के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है जीएसटी के महत्व को लेकर। अंजनी, दरअसल किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल बड़े उद्योगों, ऊंची इमारतों या आधुनिक तकनीक से नहीं होती। विकास तब होता है जब शासन व्यवस्था सरल हो, आर्थिक गतिविधियां सुचारू हो और नागरिक तथा सरकार दोनों अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समझते हैं कि जीएसटी केवल एक कर व्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता और सच्चे स्वराज की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। जीएसटी का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री पर लगाया जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जीएसटी लागू होने से पहले देश में कई प्रकार के कर लागू थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे जागृति जी। व्यापारियों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कहीं वेट था, कहीं सेवा कर, कहीं उत्पादक शुल्क, तो कहीं अन्य कर।
0: बिल्कुल,
1: इन अनेक करों की जटिल व्यवस्था से व्यापार करना आसान नहीं था। इसी समस्या का समाधान लेकर आई जीएसटी व्यवस्था, जिसने एक देश एक कर की अवधारणा को मजबूत किया।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि एक ही देश में हर राज्य की अलग अलग कर व्यवस्था हो। एक व्यापारी को एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजने के लिए अलग नियमों का पालन करना पड़े, इससे समय भी ज्यादा लगता है और लागत भी बढ़ती है। जीएसटी ने इन जटिलताओं को काफी हद तक कम किया है। इस व्यवस्था ने पूरे देश को एक साझा आर्थिक बाजार के रूप में जोड़ने का प्रयास किया है।
1: बिल्कुल,
0: जब भारत के अधिकांश हिस्सों में व्यापारिक गतिविधियां एक समान कर प्रणाली के अंतर्गत संचालित होती है अंजलि, इससे व्यापारी को सुविधा मिलती है और आर्थिक गतिविधियों में भी गति आई है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब व्यापार सरल होता है तब रोजगार बढ़ते हैं, जब रोजगार बढ़ते हैं तब लोगों की आय भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: और जब लोगों की आय बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जीएसटी ने व्यापार करने की प्रक्रिया को बहुत अधिक व्यवस्थित और सरल बनाया है। श्रोता साथियों, पहले अलग अलग प्रकार के करों के कारण व्यापारियों को कई रिकॉर्ड रखने पड़ते थे। अब अधिकांश प्रक्रिया जागृति जी एकीकृत प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। इससे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योग तक को सुविधा मिली है और यह व्यवस्था व्यापार में पारदर्शिता और अनुशासन को भी बढ़ावा देती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि सच्चे स्वराज का आधार केवल अधिकार नहीं है बल्कि जवाबदेही भी है।
1: बिल्कुल,
0: जब आर्थिक व्यवस्था पारदर्शी होती है तब भ्रष्टाचार और कर चोरी की संभावनाएं कम होती है। जीएसटी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित व्यवस्था है।
1: जी हाँ,
0: हर लेनदेन का विवरण दर्ज होता है। इससे कर संग्रह अधिक व्यवस्थित बनता है और आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखना आसान हो जाता है। पारदर्शिता केवल सरकार के लिए लाभदायक नहीं होती बल्कि ये ईमानदार व्यापारियों और नागरिकों के हितों की भी रक्षा करती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: जीएसटी भी डिजिटल व्यवस्था को अपनाकर कर प्रणाली को आधुनिक स्वरूप दिया है। ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन रिटर्न, डिजिटल रिकॉर्ड जैसे व्यवस्थाओं ने कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया है। इससे समय की बचत भी होती है और प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें तेजी आती है। श्रोता साथियों, डिजिटल व्यवस्था नागरिकों और व्यापारियों दोनों को तकनीक के उपयोग के लिए प्रेरित करती है। यह डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं जीएसटी के बारे में, ती बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और उसमें जीएसटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा के रूप में सामने आई है। श्रोता साथियों, हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, हम अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते हैं।
1: जी हाँ,
0: जीएसटी व्यवस्था ने उपभोक्ताओं के लिए भी कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। बिल लेने की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। लोग अब अधिक जागरूक हो रहे हैं कि खरीदारी के समय बिल लेना क्यों आवश्यक है। बिल केवल श्रोता साथियों भुगतान का प्रमाण नहीं होता है, बल्कि यह पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था की पहचान भी है।
1: बिल्कुल,
0: जब उपभोक्ता बिल लेते हैं तब आर्थिक गतिविधियां अधिक व्यवस्थित होती हैं और कर प्रणाली मजबूत बनती है।
1: जी अंजलि, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि कर आखिर ज्यादा का है। श्रोताओं, कर से प्राप्त राजस्व किसी भी सरकार के लिए विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है।
0: जी हाँ।
1: इन्हीं संसाधनों से सड़कें बनती है, अस्पताल विकसित होते हैं, विद्यालयों की व्यवस्था मजबूत होती है, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होता है, जल बिजली परिवहन और अन्य आधारभूत सेवाओं के विकास में भी कर राजस्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंजलि, जब कर संग्रह व्यवस्थित और पारदर्शी होते हैं तब विकास कार्यों को गति मिलती है।
0: जी हाँ, जागृति जी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आर्थिक एकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है जीएसटी। जीएसटी ने भारत को आर्थिक दृष्टि से अधिक एकजुट बनाने में योगदान दिया है। जागृति जी, देश के अलग अलग राज्यों के बीच व्यापारिक प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल हुई है। इससे वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह सुगम हुआ है। एक मजबूत राष्ट्रीय बाजार बनने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को बढ़ाती है और गुणवत्ता श्रोता साथियों उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जीएसटी केवल कर व्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि केवल बड़े उद्योग की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि छोटे व्यापारी, कुटीर उद्योग, स्थानीय उद्यमी और स्वरोजगार करने वाले भी देश की आर्थिक रीढ़ होते हैं। श्रोताओं, जीएसटी ने व्यवसाय को और अधिक संगठित स्वरूप देने का प्रयास किया है। इससे छोटे व्यापारियों को भी व्यापक बाजार तक पहुंचने के अवसर मिले हैं। जब स्थानीय उद्यम मजबूत होते हैं अंजलि, तब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलती है।
0: जी हाँ।
1: सच्चा स्वराज केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं श्रोताओं, ये प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से मजबूत होता है। यदि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो व्यवस्था और अधिक मजबूत बन सकती है। खरीदारी करते समय बिल लेना, आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता रखना, नियमों का सम्मान करना, जागरूक नागरिक बनना, ये छोटे छोटे कदम देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत का एक अलग ही महत्व है। आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं आती है। आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत आर्थिक व्यवस्था, पारदर्शी शासन और जिम्मेदार नागरिक भी आवश्यक है। जीएसटी ने देश में आर्थिक अनुशासन और एकरूपता को बढ़ावा दिया है। जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है तब निवेश बढ़ता है, जब निवेश बढ़ता है तब रोजगार बढ़ते हैं, और जब रोजगार बढ़ते हैं तब आत्मनिर्भर भारत का सपना भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि स्वराज का अर्थ केवल शासन परिवर्तन नहीं है। स्वराज का वास्तविक अर्थ है जागरूक नागरिक, जिम्मेदार समाज और पारदर्शी व्यवस्था।
1: बिल्कुल,
0: जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं तब स्वराज की भावना मजबूत होती है। जीएसटी इसी सोच को आगे बढ़ाता है।
1: जी हाँ।
0: यह व्यवस्था हमें याद दिलाती है कि विकास केवल सरकार का कार्य नहीं है। विकास एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जब व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते हैं, जब नागरिक जागरूक होकर बिल लेते हैं और जब एक संग्रह पारदर्शी होता है तब देश मजबूत बनता है और यही सच्चे स्वराज की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे श्रोताओं कि जीएसटी केवल एक कर नहीं है, ये व्यवस्था, पारदर्शिता, विश्वास और विकास का प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें बताता है कि मजबूत राष्ट्र केवल बड़े सपनों से नहीं बनते बल्कि व्यवस्थित प्रयासों, ईमानदार भागीदारी और जिम्मेदार नागरिकता से बनते हैं।
0: जी जी।
1: तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि हम जागरूक नागरिक बने, आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा दें, नियमों का सम्मान करें और राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाएं। क्योंकि जब नागरिक जिम्मेदार बनते हैं अंजलि, तब विकास की गति बढ़ती है। जब व्यवस्था पारदर्शी बनती है तब विश्वास मजबूत होता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तब सच्चे अर्थों में स्वराज स्थापित होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि कर व्यवस्था हो पारदर्शी, विकास बने सबका अधिकार, जीएसटी के साथ आगे बढ़े भारत, स्वराज बने सशक्त और शानदार।
1: जी हाँ। तो श्रोताओं, जीएसटी केवल एक कर व्यवस्था में बदलाव नहीं बल्कि यह एक ऐसे भारत की कल्पना है जहां व्यवस्था सरल हो, व्यापार आसान हो, कर संग्रह पारदर्शी हो और विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, जब नागरिक ईमानदारी से कर देते हैं अंजलि, सरकार उन संसाधनों का उपयोग जन कल्याण में करती है, तब सच्चे अर्थों में स्वराज की भावना मजबूत होती है। तो हम सभी को जागरूक नागरिक बनना है, हर खरीदारी पर बिल लेना है, कर नियमों का सम्मान करना है और एक मजबूत पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है। क्योंकि कहा गया है कि कर का सही भुगतान करेंगे, विकास का नया अभियान चलाएंगे, जीएसटी को समझेंगे और अपनाएंगे, तभी सच्चे स्वराज की राह बना पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हो गई हैं श्रोता साथियों से कि जीएसटी क्या है और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है प्रकृति के साथ जुड़ाव और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर। हम देखते हैं कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध उतना ही पुराना है मनीषा और कशिश, जितना स्वयं मानव सभ्यता का इतिहास है।
1: बिल्कुल
2: जी हाँ। प्रकृति ने मनुष्य को जन्म से लेकर जीवन के प्रत्येक चरण तक हर वह चीज प्रदान की है जो उसके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। शुद्ध वायु, निर्मल जल, पौष्टिक भोजन, औषधियाँ, ऊर्जा, मानसिक शांति, आधुनिक जीवन शैली में तकनीक, व्यस्त दिनचर्या और शहरीकरण के कारण मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
2: इसका प्रभाव श्रोता साथियों केवल पर्यावरण पर ही नहीं पड़ता बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
1: जी हाँ।
2: तनाव, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं आज तेजी से बढ़ रही है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हमारा किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें ढेर सारी होंगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले कार्यक्रम का गीत हम सुनवा दें।
2: जी हाँ
1: जी,
2: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ाव और बेहतर स्वास्थ्य का क्या संबंध है।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, अगर इसी में बात करें तो हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ाव केवल एक शौक नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन की आवश्यकता बन चुकी है।
1: जी,
0: प्रकृति हमें केवल सुंदर दृश्य ही नहीं देती साथियों, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी सिखाती है। हम देखते हैं मनीषा और अंजलि जी की हरे भरे पेड़, खुला आकाश, चहचहाते पक्षी, बहती नदियाँ, बगीचे मन को सुकून देते हैं और हमारे शरीर को नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही वैज्ञानिक शोधों से भी ये सिद्ध हो चुका है कि नियमित रूप से प्रकृति के संपर्क में रहने वाले लोग अधिक स्वस्थ, प्रसन्न और संतुलित जीवन जीते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ाव को अपनाना श्रोता साथियों केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रकृति केवल जंगल, पहाड़, नदियों का नाम नहीं है। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, ऋतुएं और हवाएं संपूर्ण पर्यावरण में शामिल होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: प्रकृति जीवन का आधार है श्रोता साथियों। यदि प्रकृति स्वस्थ होगी तो मनुष्य भी स्वस्थ रहेगा।
2: जी हाँ।
1: साथ ही हम देखते हैं कि प्रकृति और मानव का भी अंजलि जी गहरा संबंध है। मनुष्य

0: हरियाली के बीच टहलने से हृदय मजबूत होता है और रोजाना पैदल चलने से मोटापा नियंत्रित रहता है।
1: हाँ।
0: रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर अधिक सक्रिय और ऊर्जावान भी बना रहता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मजबूत बन पाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही बात आती है कि इस मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकृति का क्या प्रभाव है। तो जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है।
2: बिल्कुल,
1: प्रकृति मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक औषधि का कार्य करती है। ऐसे में जैसे कि प्रकृति में रहने से तनाव और चिंता कम होती है।
2: जी हाँ,
1: मन शांत और प्रसन्न रहता है। साथियों, सकारात्मक सोच विकसित होती है, क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होता है, साथ ही ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ती है।
2: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। अंजलि जी, दोस्तों कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति कुछ समय पेड़ों की छाया में बैठता है या किसी पार्क में घूमता है तो उसका मन स्वतः ही हल्का महसूस होने लगता है।
0: जी हाँ,
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे प्रकृति के साथ जुड़ाव और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम के माध्यम से जाना था श्रोता साथियों कि प्राकृतिक का वास्तविक अर्थ क्या है, प्रकृति और मानव का गहरा संबंध किस प्रकार है। साथ ही अंजलि जी, हमने जाना था कि प्रकृति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों उपयोगी है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर बात करें श्रोता साथियों कि सूर्य का स्वास्थ्य में क्या योगदान है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सूर्य है वो जीवन का एक स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: सूर्य की हल्की सुबह की किरणें श्रोता साथियों विटामिन डी का निर्माण करती है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, मनोदशा को बेहतर बनाती है और हमारी गुणवत्ता में भी सुधार करती है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं।
1: बिल्कुल, यही अब बात आती है मनीषा कशिश पेड़ पौधों का स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। हम देखते हैं कि पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: पेड़ों से हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण कम होता है, तापमान नियंत्रित रहता है, धूल और धुएं में कमी आती है, मानसिक शांति मिलती है और जैव विविधता सुरक्षित रहती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि प्रकृति हमें ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, औषधीय पौधे प्रदान करती है। प्रकृति का जो भोजन है वो हमें कई लाभ देता है, जैसे कि पाचन अच्छा रहता है, पोषण अच्छा रहता है, मोटापा कम होता है, मधुमेह और हृदय रोग का खतरा घटता है, इसी के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ पाती है।
2: जी बिल्कुल, बिल्कुल अंजलि जी आपने सही कहा। अब यहीं अगर औषधीय पौधों के महत्व को हम जानें, तो श्रोता साथियों आयुर्वेद में अनेक पौधों का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि तुलसी, नीम, गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा, सहजन और आंवला। साथियों, इन पौधों का उचित उपयोग अनेक रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक होता है।
1: बिल्कुल,
2: वहीं बच्चों के विकास में भी प्रकृति की भूमिका देखी जाती है।
0: जी हाँ
2: अंजलि जी, ऐसा बताया जाता है कि यदि बच्चे जो हैं वो प्रकृति के बीच खेलते हैं तो उनका विकास अधिक संतुलित होता है।
0: जी हाँ,
2: शारीरिक गतिविधि बढ़ती है, रचनात्मकता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है साथ ही, और स्क्रीन टाइम भी बच्चों का कम होता है।
0: जी हाँ,
2: जिससे बच्चों के सामाजिक व्यवहार में बदलाव आता है या फिर कह सकते हैं कि बेहतर बनते हैं वे।
0: जी बिल्कुल कशिश, यहीं अगर बात करें कि बुजुर्गों के लिए प्रकृति का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बुजुर्गों के लिए प्रकृति मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से लाभकारी होती है। उनके रक्तचाप को नियंत्रित करती है, अकेलेपन की भावना होती है उसको कम करती है साथियों, साथ ही तनाव को कम करती है, हल्का व्यायाम संभव होता है और साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच है वो भी बनी रहती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, यदि योग और ध्यान प्रकृति के बीच किया जाए तो हम देखते हैं कि उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। मन अधिक शांत रहता है श्रोता साथियों, स्वास बेहतर रहती है, ध्यान में एकाग्रता आती है और मानसिक संतुलन मजबूत होता है।
0: बिल्कुल,
1: शरीर अधिक लचीला बन जाता है। कहना चाहेंगे कशिश और मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से कि स्वस्थ पर्यावरण में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य से बेहतर रहती है। प्राकृतिक जीवन शैली जैसे कि पर्याप्त धूप लेना, शुद्ध हवा, पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, इन सब के कारण शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। आज अधिकांश लोग हम देखते हैं कि मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं, घर और कार्यालय में बंद रहते हैं, शारीरिक श्रम कम हो गया है और कृत्रिम वातावरण में वो रहते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि तनाव बढ़ गया है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है, मोटापा बढ़ता है और मानसिक समस्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्राकृतिक जीवन शैली समाप्त हो रही है।
2: जी हाँ अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें दोस्तों कि आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि प्रकृति से जुड़ने के कुछ सरल उपाय भी है जो हम अपना सकते हैं, जैसे कि हमें प्रतिदिन सुबह सैर के लिए जाना चाहिए।
0: जी हाँ,
2: हम घर में श्रोता साथियों अलग अलग तरह के पौधे लगा सकते हैं। सप्ताह में एक दिन प्राकृतिक स्थान पर श्रोता साथियों आप जा सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी खुले मैदान में खेलने की अनुमति आप दें।
0: जी जी
2: बिल्कुल, वर्षा जल संरक्षण को अपनी जीवन शैली में अपनाएं, पौष्टिक प्राकृतिक भोजन करें साथियों, अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग कम ही करें, पक्षियों के लिए पानी रखें, अधिक समय खुले वातावरण में बिताएं और डिजिटल उपकरणों से कुछ समय के लिए दूरी बनाएं।
0: बिल्कुल,
2: अगर अंजलि जी हमारे श्रोता साथी ये सारे उपाय अपनाते हैं तो हम खुद ही देखेंगे कि इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि प्रकृति धैर्य, संतुलन और सहयोग और निरंतरता का संदेश देती है।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है साथियों, नदियाँ बिना रुके बहती रहती हैं, ऋतुएं समय पर बदलती रहती हैं।
2: बिल्कुल,
0: और सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। श्रोता साथियों, यदि मनुष्य भी प्रकृति से ये गुण ले तो तो उसका जीवन अधिक संतुलित, स्वस्थ और सुखी बन सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
2: जी हाँ।
1: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: जी
1: विदा
2: हाँ।
1: जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: बिल्कुल अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है।
1: जी हाँ।
0: हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट गुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत होती है एक नए विषय को लेकर। आज भी साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही एक प्रेरणादायक नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सफलता की तैयारी को लेकर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो सफलता शब्द है वो हमें अंदर से आत्मविश्वास से भर देता है। जब भी हम सफलता या सफल व्यक्ति की कहानी के बारे में जानते हैं या सुनते हैं साथियों, तो हमारे अंदर एक अलग ही साहस पैदा हो जाता है और हम भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए या फिर कहें कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी कि हमें सफलता की तैयारी कैसे करनी है और सफल लोगों की पहचान क्या होती है। तो बातें करेंगे दोस्तों ढेर सारी आपसे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम गीत संगीत के साथ पहले आपको मनोरंजन करवाते हैं। तो शुरुआत में सुनते हैं दोस्तों पहले कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसे कि दोस्तों प्रेरणादायक विषय कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ चुका है, आज हम बात कर रहे हैं सफलता की तैयारी को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि हम जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर उसकी उपलब्धियां हमें दिखाई देती हैं। हमें उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी सफलता सब कुछ नजर आता है। लेकिन दोस्तों, जो चीज है वो हमें दिखाई नहीं देती, वो है उसकी तैयारी। सफलता श्रोता साथियों मंच पर दिखाई देती है, लेकिन उसकी तैयारी पर्दे के पीछे ही रह जाती है। कई बार हम युवा साथी ये सोचते हैं साथियों कि सफलता किस्मत से मिलती है, किसी खास अवसर से मिलती है, या फिर कुछ लोगों के लिए बनी होती है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि सफलता अचानक नहीं आती, वह तैयारियों का परिणाम होती है, लंबे संघर्ष का परिणाम होती है और धैर्य का परिणाम होती है। हम देखते हैं कि सफलता का बीज तैयारी में छिपा होता है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक किसान जो है वो खेत में बीज बोता है, वह हर रोज उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है, कई दिनों तक उससे परिणाम नहीं दिखाई देते, लेकिन वह मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। फिर एक दिन दोस्तों वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है साथियों। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, नई स्किल सीख रहे होते हैं, समय का सही उपयोग कर रहे होते हैं या अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे होते हैं, तब हम अपनी सफलता का बीज बो रहे होते हैं साथियों। और एक दिन श्रोता साथियों, हमारा धैर्य और हमारा संघर्ष रूपी जो बीज हमने बोया है वो अंकुर बनकर सामने आता है और सफलता का परिणाम लेकर आता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि सफलता का बीज तैयारी में छिपा होता है। साथ ही आज के समय की अगर बात करें तो बहुत से युवा साथियों को ऐसा लगता है कि सफलता के लिए तैयारी करना जरूरी नहीं होता। एक विद्यार्थी अच्छे अंक चाहता है लेकिन नियमित साथियों अध्ययन नहीं करता, कोई नौकरी चाहता है लेकिन अपने कौशल पर काम करना नहीं चाहता, कोई अच्छा वक्ता बनना चाहता है लेकिन लोगों के सामने बोलने का अभ्यास नहीं करना चाहता। सवाल ये नहीं है श्रोता साथियों कि हम बनना क्या चाहते हैं, सवाल तो ये है कि क्या हम उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्या हम सफलता के लिए तैयार हैं साथियों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सफलता की तैयारी हमें शुरू कैसे करनी है। तो आगे कार्यक्रम में हम जरूर जानेंगे साथियों कि सफलता की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना है और उसके बाद दूसरा कदम हमारा क्या हो सकता है। ऐसे ही ढेर सारी बातें करेंगे और भी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाऊं। तो आइए साथियों पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से सफलता कैसे पानी है और सफलता की तैयारी हम कैसे करेंगे, इस विषय को लेकर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। गीत से पहले मैंने आपको सफलता के महत्व के बारे में तो बता दिया था साथियों कि सफलता कैसी होती है। अब यही हम जानते हैं कि सफलता की तैयारी करने के लिए हमें पहला कदम क्या उठाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला कदम तो हमारा यही होना चाहिए कि हमें समय का सम्मान करना है। श्रोता साथियों, सफल लोगों और सामान्य लोगों के पास एक जैसे ही 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग समय को खर्च नहीं करते बल्कि निवेश करते हैं, और आज के जो हमारे युवा साथी हैं वो कई घंटों मोबाइल पर ही रील और कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर चीजें देखते रहते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे तो इस कार्य का समय ही नहीं मिला। साथियों, सही बात तो ये है कि यदि हम केवल एक सप्ताह तक अपनी दिनचर्या लिख लें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा समय जा कहां रहा है। जैसे कि आप एक छोटी सी डायरी तैयार करें, उसमें आप रोज लिखिए कि आपने पढ़ाई कितनी की, मोबाइल कितना चलाया, कुछ नया क्या सीखा, समय आपका व्यर्थ कहां गया। साथियों, यही आदत आपको स्वयं का मूल्यांकन करना सिखाएगी और फिर आप देखेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि समय जाता कहां है, ताकि आप आगे जाकर ये ना कहें कि मुझे तो इस काम का समय ही नहीं मिला। तो ऐसे में श्रोता साथियों, याद रखे कि सफलता केवल किताबों से नहीं मिलती, सफलता सीखने की आदत है। हर दिन हमें खुद से ये पूछना है कि आज मैंने नया क्या सीखा। अगर आपके पास श्रोता साथियों महंगे संसाधन नहीं है, तब भी आप सीख सकते हैं। आज हमारे पास पुस्तकालय है, ऑनलाइन सामग्रियां हैं, अनुभवी लोग हैं। साथियों, बस हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम किसी कार्य को एकाग्रता के साथ सीख पाएंगे और कर पाएंगे। साथ ही एक और बात यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, कि असफलता से आपको डरना नहीं है बल्कि उसका उपयोग करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई युवा ऐसे हैं दोस्तों जो असफल होने पर अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन ये करना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सपने श्रोता साथियों वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और हमें सोने ही ना दे। श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि असफलता सफलता की तैयारी का ही हिस्सा होती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर श्रोता साथियों वह गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसी तरह जीवन में भी गिरना सामान्य है। श्रोता साथियों, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गिरावट के बाद हम क्या सीख रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग मेहनत करते हैं, हमने देखा भी है, लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, जैसे कि आलोचना सुनते ही टूट जाते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं, छोटी समस्या पर हार मान लेते हैं और नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। साथियों, ऐसे में सफलता के लिए मजबूत मानसिकता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप खुद से ये कहिए, मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, और मैं अपनी कोशिश जारी जरूर रखूंगा या रखूंगी। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं वो आपको अंदर से आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। इससे

आप आगे भी बढ़ पाएंगे और कुछ नया सीख भी पाएंगे साथियों। साथ ही जीवन में सही लोगों का चुनाव होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपका जो वातावरण है वो आपकी तैयारी को प्रभावित करता है। यदि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी शिकायत करते रहते हैं या किसी और की शिकायत करते रहते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा उनसे प्रभावित होंगी। ऐसे लोगों का साथ चुनिए श्रोता साथियों, जो आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करे, जो आपके सपनों पर विश्वास करे और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। हम जैसा कि सुनते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे सफल बनना है, लेकिन सफलता किस क्षेत्र में, कब बनना है, किस तरीके से बनना है, इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। इसलिए आप अपना लक्ष्य तय रखें। आप ऐसा ना सोचें कि मुझे सफल बनना है, बल्कि आप ये सोचिए कि मुझे अगले 6 महीनों में अपनी संचार क्षमता बेहतर करनी है, या फिर मुझे इस परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। दोस्तों इस तरीके से जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी आप सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं साथियों कि सफलता का रहस्य कोई जादुई सूत्र नहीं है, यह तो श्रोता साथियों 5 शक्तिशाली आदतों का सूत्र है, जैसे कि समय का सम्मान, निरंतर सीखने की आदत, अनुशासन, सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास करना। साथियों जो व्यक्ति इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसकी सफलता केवल समय की बात नहीं रह जाती, वह सफलता जरूर प्राप्त करता है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी साथियों कि सफलता पाना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन मुमकिन काम जरूर है। हाँ श्रोता साथियों, हो सकता है कि आपको उसमें असफलता मिले, लेकिन असफलता कभी सफलता को रोकती नहीं है। असफलता तो सफलता तक बढ़ने का एक रास्ता होती है साथियों, इसलिए हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता को जरूर प्राप्त कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि सपने देखना बहुत सुंदर बात होती है साथियों, लेकिन सपनों को सच करने के लिए तैयारी करनी जरूर पड़ती है। याद रखिए आप कि सफलता मंजिल नहीं, तैयारी की यात्रा का परिणाम है। आज से अपने सपनों की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, एक नई आदत को अपनाइए, एक नया कौशल सीखिए साथियों, और एक घंटा बेहतर उपयोग कीजिए और खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपने सपनों का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उनके लिए तैयारी करेंगे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।